आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में सुबह के 7 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 7 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 8 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to रेडियो गाना and it's 9 AM in India. Keep listening to रेडियो गाना. Thank you.

0: बाजे चंग बसंती।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 10 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

हेलो हाइन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं आप सबके रेडियो दोस्त आरजे रिया खान आप सबके बीच बहुत जल्द आने वाली हूँ, बहुत जल्द। बस कल तक का वेट कीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और दोस्तों, अभी मैं अपनी पसंद का कुछ गाना प्ले करूंगी, आप सब इंजॉय कीजिए। बीच में इसी तरीके से मैं आती रहूंगी, आप सब का कुछ कुछ मनोरंजन करती रहूंगी। मुझे भी उतना ही खुशी हो रही है जितना आप सबको खुशियां हो रही है। तो हमारा ये आज का स्वीट वाला गुड मॉर्निंग कबूल कीजिए आप सभी।

जी हाँ दोस्तों, मंडोले मेरा तंडोले, बिल्कुल बिल्कुल गाना बहुत ही खूबसूरत था। और हमारी स्टूडियो की घड़ी बता रही है 10:35 हो चुके हैं और आप सब हैं स्वीट वाले गुड मॉर्निंग के साथ। आरजे रिया आप सब के साथ बनी हुई है और बस थोड़ा थोड़ा बनी रहेगी क्योंकि इस समय आप सबके साथ कंटिन्यू बने रहने का कोई भी अभी हमारा इरादा नहीं है, तो नहीं है, बस गाना एंजॉय कीजिए। और बीच बीच में मैं आप सभी को इसी तरह आकर कुछ कुछ बोलती रहूँगी। तो चलिए एक गाना और सुनते हैं और चलिए जी बिल्कुल, गाना कहाँ चला गया, चलो बाहर निकलो, हाँ मिल गया। चलिए गाना एंजॉय कीजिए, गाने के बाद फिर लौटते तो कुछ मज़ेदार सी बातें भी करते हैं।

0: जी हाँ दोस्तों, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है। बिल्कुल बिल्कुल, गाना बहुत ही खूबसूरत चल रहा है। और चलते हैं, हमारे साथ बहुत सारे दोस्त जुड़ चुके हैं और हमारे साथ राजेश कुमार जी भी जुड़े हैं, हमारे साथ रविंद्र सानू जी भी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ बहुत सारे दोस्त इस वक्त जुड़े हुए हैं। जो मैसेज मैं देखूंगी तो मैं फिर से आपके पास से उन सभी का नाम भी लूँगी। तो बस आप लोग इंजॉय कर रहे हैं गुड मॉर्निंग के साथ, तो चलिए एक गाना और भी प्ले करते हैं और गाना इंजॉय कीजिए। तो गाना के बाद फिर लौटते हैं तो आप सभी से बात।
1: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।

दोस्तों, ये प्यारा सा गीत सुन रहे थे, रुक जाना। ओ जी, बिल्कुल। गाना कुछ मैंने सुर को नहीं धर पाई, तो गाना बहुत ही खूबसूरत था, क्योंकि गाना ये हमारे भी दिल के करीब है। मुझे अच्छा लगता है सुनने में, तो मॉर्निंग मॉर्निंग सुनने में भी और अच्छा लगता है। तो हमारे साथ अशोक देशमुख जी भी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ रविंद्र सानू जी, हमारे साथ राजेश कुमार जी। ये लोग पूछ रहे हैं कि आप गाना भी फरमाइए। आप भेज सकते हैं, मैं प्ले कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अभी तो मेरा वो टैमली वाला प्रोग्राम तो चल नहीं रहा, तो मैं तो बस अभी ऐसे स्वीट वाले मॉर्निंग में आप सबके बीच आ चुकी हूँ, आरजे रिया। तो बस रिया से आप लोग अपनी फरमाइशें पूरी करवा सकते हैं, कोई इसमें कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। तो जैसे कि रिया अपनी जो पसंद के गाने प्ले कर रही है, तो बस आप भी अपने गाने प्ले करवा सकते हैं, अपनी बातें भी बोल कर भेज सकते हैं, और मैं आपकी बातों को भी यहाँ पे जो है प्ले कर दूंगी, यानी आप अपने फीडबैक दे सकते हैं मुझे। तो चलिए, मैं आपके लिए एक गाना लेकर आई हूँ। तब तक हमारे पास पूछ रहे हैं हमारे अशोक देशमुख की, गाना भी भेज सकती हूँ? जी बिल्कुल बिल्कुल भेज सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है, आप भेज दीजिए। और चलिए गाना एंजॉय कीजिए, गाने के बाद लौटेंगे तो आप सबके लिए। तो हेलो दोस्तों, आपने ट्यून किया है रेडियो गाना, आप सुन रहे हैं आरजे रिया के साथ गुड मॉर्निंग। तो चलिए गाना एंजॉय करते हैं।

0: जी हाँ दोस्तों, तुझे रब ने बनाया किस लिए किस लिए। तो गाना बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही मजेदार गाना था, सुनने में बहुत मजा आता है। तो चलिए, हमारे पास एक फीडबैक आया, हमें सुनते हैं वो क्या बोलकर भेजे हैं। हम सभी सुनते हैं, हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं।
1: तुझे

0: भैया जी, अभी हम ये गाना सुन रहे थे, ये आपकी पसंद पे गाना बज रहा था और ये गाना हमें बहुत अच्छा लगा रिया जी। और रेडियो गाना पे आप अभी अपनी पसंद के जो गाने बजा रही हैं रिया जी, ये गाने हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि रेडियो गाना पे आप जल्दी हमारे लिए शो लेकर आने वाली है। तो जितने भी श्रोता रेडियो गाना पे जुड़े हैं, मैं सबको प्यार भरा गुड मॉर्निंग कहना चाहूंगा और आपको भी सुबह का प्यार भरा नमस्कार रिया जी, गुड मॉर्निंग आपको भी। मैं हूँ आप सबका अपना रेडियो दोस्त रविंदर सानू, ताजपुर गाजीपुर उत्तर प्रदेश से, और आपकी पसंद के एक से बढ़कर एक सुपर हिट गानों का हम एंजॉय कर रहे हैं रेडियो गाना पे रिया जी। और अगर आपको समय मिले तो मेरी भी पसंद का एक गाना बजा दीजिए। एक लड़की है दीवानी सी, उस लड़की पे मैं मरता हूँ।
1: अच्छा,
0: तो ये गाना मुझे सुना दीजिए रिया जी, और हम सभी गानों को एंजॉय कर रहे हैं और आपकी आपका जो बोलने का अंदाज है रिया जी, हमें बहुत पसंद आ रहा है और बहुत ही जल्द हम श्रोताओं के लिए आप कार्यक्रम लेकर आएंगे उम्मीद करते हैं। तो फिलहाल आप सब दोस्त सुनते रहिए आज रिया जी के साथ रेडियो गाना, बजाते रहो दिल से।
1: जी हाँ, आप सभी ने ट्यून किया है रेडियो गाना और आप हैं आरजे रिया के साथ बने हुए, और बस थोड़ा सा मैं मॉर्निंग मस्ती कर रही हूँ, तो बस आप सब भी मस्ती कीजिए। हेलो गुड मॉर्निंग, आरजे रिया के साथ आप सभी का स्वागत है हमारे रेडियो गाना पे। तो चलिए, हमारे रविंद्र सानू जी हमारे पास एक गाना भेजे और गाकर ही भेजे थे, तो चलिए उनके गाने को प्ले करते हैं। उनके बाद हमारे पास जो एक डिमांड आया वो हमारे राजेश कुमार जी का है, मैं जरूर से राजेश कुमार आप तक भी पहुंचूंगी। और हमारे साथ अशोक देशमुख जी भी जुड़ चुके हैं और वो भी लिख रहे हैं प्यार भरा नमस्कार। और या जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपके भी गाने तक मैं पहुंचूंगी, जरूर से पहुंचूंगी, और वो भी हमारे शो को एंजॉय कर रहे हैं। तो पहले मैं रविंद्र सानू जी की फरमाइश को पूरी करती हूँ, फिर मैं आगे मैसेज भी देख लूंगी, कोई बात नहीं है। तो चलिए गाना एंजॉय कीजिए, मैं बनी हूँ बस एंजॉय कर रही हूँ, जब तक थोड़ा भी मेरे को टाइम मिलता है तब तक मैं आप सभी के साथ बनी रहूँगी। और फिर क्योंकि आज है हमारा जो एक त्यौहार होता है ना मिलादुन्नबी, वो है, तो आज मैं बहुत बिजी भी हूँ, तो बस जितना समय मुझे मिलेगा मैं आप सभी के साथ बनी रहूँगी। तो बस गाना एंजॉय कीजिए रविंद्र सानू जी।

0: जी हाँ दोस्तों, ये प्यारी सी फरमाइश हमारे रविंद्र सानू जी की फरमाइश पे सुन रहे थे, और हमारे साथ राजेश शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। तो जी बिल्कुल, राकेश शर्मा जी, जी बिल्कुल राकेश शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं और उनकी भी फरमाइश आ चुकी है। तो मैं जिन लोगों की भी फरमाइश आ चुकी है, मैं ज़रूर से आप सबकी फरमाइशें तक पहुँचूंगी। और ये कौन है हमारे साथ, यहाँ से देखते हैं। डीपी से संतोष प्रजापति जी भी जुड़ चुके हैं और उनका भी मैं गुड मॉर्निंग के साथ स्वागत करती हूँ। और हमारे साथ कौन कौन से दोस्त, बहुत सारे जुड़ चुके हैं और हमें इस समय टाइम ही नहीं है। तो चलिए सबसे पहले मैं चलती हूँ अशोक देशमुख जी के पास, और ये सुनना चाहते हैं, तुम ना मिले तो हम बन जाएंगे जोगी। जी बिल्कुल, गाना एंजॉय कीजिए। सुहानी हो गई।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना and it's 11 a.m. in India. Keep listening to Radio Gana. Thank you.

दोस्तों क्या है ना कि थोड़ा सा सर्वर प्रॉब्लम है और उसी वजह से थोड़ा सा मुझे परेशानी हुई और आप सबको भी थोड़ा सा सुनने में परेशानी हुई। बट गाना तो एंजॉय कर ही रहे हैं, वो कोई भी सर्वर से हो। तो चलिए मैं आ चुकी हूँ लाइव और ये गाना अशोक देशमुख जी का है, तो चलिए गाना एंजॉय।

0: दोस्तों, ये जो प्यारी सी फरमाइश प्ले हो रही थी हमारे अशोक देशमुख जी की, और अशोक देशमुख जी हमारे पास एक फीडबैक भी भेजे। चलिए सुनते हैं क्या बोलकर भेजे।
1: आपने हमें धन्यवाद रिया खान जी, आपने हमारी फरमाइश का गीत सुनवाया, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: शुक्रिया आपका।
1: और हमें बेहद खुशी हो रही है
0: जी जी
1: कि आप रेडियो गाना पर प्रोग्राम पेश करेंगी।
0: जी थैंक यू,
1: तो बहुत जल्दी आ जाइए, हम इंतजार कर रहे हैं।
0: जी जी, मैं बिल्कुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अशोक देशमुख जी, आप हमारे मतलब कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और तो बस एक सेकंड, मुझे आगे मोबाइल को बंद करना होगा। तो चलिए, मैंने अशोक देशमुख जी की फरमाइश को प्ले किया और उन्हें बहुत पसंद आया, और उन्हें मेरा इंतज़ार है कि मैं रेडियो गाना पे शोले कराऊँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि कल से अपने मतलब आधारित टाइम पे यानी 2 बजे से मेरा कार्यक्रम आएगा, और मैं मेरा मन है कि जितना देर तक मैं कर सकती हूँ तो करूँगी, और उस बीच 6 क्वेश्चंस भी होंगे आप सभी के लिए। तो बस आप सभी जुड़े रहिएगा रेडियो गाना से, और रेडियो गाना पे आप सभी के साथ बनी रहेगी आप सबकी प्यारी सी रेडियो दोस्त आरजे रिया खान। और हमारे स्टूडियो की घड़ी बता रही है 11:15 हो चुके हैं, और आज दोस्तों जिन लोगों का बर्थडे है या जिन लोगों का एनिवर्सरी है, सभी को रिया की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और हमारे आरजे अमन सर जी की तरफ से भी, और हमारे जितने भी आरजे हैं उन सभी की तरफ से आप सबको शुभकामनाएं। और चलते हैं कहाँ पे आज, चलिए मैं चलती हूँ। हमारे पास एक मैसेज आया है, वो है हमारे कौन से दोस्त, जरा देख लेते हैं। वो है हमारे संतोष प्रजापति जी, और ये लिखते हैं कि नमस्कार रिया जी, बिल्कुल नमस्कार, रेडियो गाना बजाते रहो, आरजे रिया खान जी को नमस्कार। जी बिल्कुल नमस्कार संतोष प्रजापति, वाइफ माया प्रजापति MP इंदौर से गीत सुनना चाहते हैं जी, पिघलता आसमान से। जी बिल्कुल, मैं आपके गाने तक भी पहुंचूंगी। और हमारे पास किनका मैसेज है, किनकी तरफ जाएंगे गाना, जिनका डिमांड आया है, वो है हमारे राजेश कुमार जी, और ये लिखते हैं कि मुझे भी आरजे रिया जी नमस्कार, नमस्कार आपको भी और इनको भी, गाना सुना है। तो चलिए गाना मैं लेकर आ चुकी हूँ, और गाना के कुछ बोल इस तरीके से हैं। कौन से बोल हैं, मैंने तुझे खत लिखा ओ साजन। जी जी जी बिल्कुल, आपने खत लिखा है किसी साजन को, तो जरूर से जरूर से जरूर से गाना सुनवाएंगे। और क्या है ना कि जब मैं शो करती हूँ ना, तो फिर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, आप लोगों को छोड़ने का मन भी नहीं करता। तो चलिए, फिलहाल मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि मैं शो से बनी रहूँ, लेकिन लेकिन आज मेरा जो टाइम है ना, वो इजाज़त नहीं दे रहा है कि मैं आप सभी से बनी रहूँ।
2: Mm-hmm.

0: दोस्तों थोड़ा सा सर्वर प्रॉब्लम है और सर्वर प्रॉब्लम की वजह से जो है गाना जो है डाउनलोड होने में थोड़ा सा परेशानी हो रही है। चलिए गाना आ चुका है। गाना ये है हमारे राजेश कुमार जी का। और राजेश कुमार जी अपने गाने को एंजॉय कीजिए, इनके बाद मैं अगली फरमाइश भी लूंगी, तो तब तक के लिए गाना एंजॉय कीजिए।
1: नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम टिप्स ऑफिशियल।

तो दोस्तों गाना साइड में प्ले हो देने देते हैं और चलते हैं कहाँ, चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ। और हमारे साथ राकेश, ये कौन है, यहाँ से देखते हैं नाम इनका, राकेश शर्मा जी, राकेश शर्मा ही जी हैं। जी जी बिल्कुल, राकेश शर्मा जी, आपने लिखा है कि भैया का गाना बहुत ही सुपर है। तो जी बिल्कुल, आपके भैया का गाना बहुत ही अच्छा है और अब मैं आपके ही गाने की तरफ चल रही हूँ। तो बस आपके गाने की तरफ चलूँगी और वो एक गाना और है हमारे संतोष प्रजापति जी का, उनका भी गाना मैं प्ले करूँगी और उसके बाद आप सबसे मैं यहाँ पर से विदा भी लूँगी, क्योंकि आज ही बहुत व्यस्त दिन है। और बहुत व्यस्त दिन का मतलब बहुत बहुत बहुत, और मैंने बस चेक करने के लिए आप सबके बीच आ चुकी थी गुड मॉर्निंग के साथ। तो बस आप सब को कैसा लगा, तो बस सर जी को बता दीजिएगा, यानी हमारे अमन सर जी को बताइएगा कि रिया जी का प्रोग्राम आप सभी को कैसा लगा, बस आई पल भर के लिए, लेकिन कार्यक्रम कितना अच्छा लगा, कितना नहीं अच्छा लगा, जो भी आपको कमियां नजर आ रही है जरूर से उनसे बताइएगा। और चलते हैं कहाँ पे, मैं चलूंगी राजेश कुमार जी की तरफ, राजेश शर्मा, राकेश शर्मा जी की तरफ। जी जी इन दोनों भाई के नाम में हमेशा मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो चलिए इनका गाना है आपके आने आपका आना दिल धड़काना। तो जी बिल्कुल गाना एंजॉय कीजिए, इस गाने के बाद लौटते हैं तो मैं चलूँगी संतोष प्रजापति जी की गाने की तरफ और फिर मैं आप सभी से विदा लूँगी। ओके, गाना एंजॉय कीजिए।

जी हाँ दोस्तों, ये गाना हमारे राकेश शर्मा जी की पसंद का था। और चलते हैं हम कहाँ पे, हम चलते हैं संतोष प्रजापति जी की तरफ। और उन्हें गाना बहुत ही अच्छा लगा है, तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपके ही गाने की तरफ चलते हैं। आप सुनना चाहते हैं पिघलता आसमान से मूवी से, तो चलिए आपके गाने तक मैं पहुंचती हूँ। आपने गाने के बोल लिखे हैं, तेरी मेरी प्रेम कहानी। जी बिल्कुल, गाना बहुत ही खूबसूरत है। और इस गाने के बाद मैं जब लौटूंगी तो आप सब से विदा लूंगी, क्योंकि जो है ना, आज बहुत बिजी का दिन है। मतलब आज हमारे पास बहुत कम समय है और मैं आप लोगों के साथ इतना देर तो नहीं बनी रहूँगी। चलिए गुड मॉर्निंग के साथ मैं गुड आफ्टरनून में भी एंट्री करने जाऊँगी, आधा घंटा के बाद। नहीं, आधा घंटा नहीं, बस मात्र हमारी 25 मिनट के बाद। तो चलिए मैं गाना सुनाती हूँ संतोष प्रजापति की फरमाइश पे, और गाना एंजॉय कीजिए। फिर आते हैं तो मैं देखती हूँ, अगर किसी का फरमाइश होगा तो प्ले कर दूँगी, वरना मुझे अभी इस वक्त इस कार्यक्रम से निकलने की इजाज़त चाहूँगी। तो चलिए गुड मॉर्निंग के साथ ये

0: जी हाँ दोस्तों, तेरी मेरी प्रेम कहानी किताबों में जी बिल्कुल, गाना बहुत ही खूबसूरत था। और चलिए, हमारे पास कुछ वॉइस आई हुई है, चलिए प्ले करते हैं।
1: शुक्रिया शुक्रिया रिया जी, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया मेरा गाना बजाने के लिए शुक्रिया। और ये गाना आपके ऊपर है, आपका ना दिल धड़काना।
0: वाह क्या बात है जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप जब शुक्रिया बोला तो आपकी जुबान पे रिया तो आ ही गई। तो
1: शुक्रिया
0: बहुत
1: शुक्रिया
0: जी जी बिल्कुल, आपका शुक्रिया शुक्रिया, बिल्कुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे पास राजेश कुमार जी का भी मैसेज आया और ये लिखते हैं कि रिया जी गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया, यानी रिया रिया रिया, आप सबके जुबान पे रिया रिया आ चुकी है और सभी ने हमें वेलकम किया है। तो चलिए, अब इतना मैसेज तो मैं नहीं ले सकूंगी। और हमारे पास संतोष प्रजापति जी का भी मैसेज आ चुका है, ये लिखते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद रिया दीदी हमारा गीत सुनवाने के लिए। जी बिल्कुल, रेडियो गाना पे, जी बिल्कुल रेडियो गाना पर ही आप सुनेंगे आरजे रिया को, और आप सबके बीच बनी रहेगी, आप सबके साथ कल दोपहरिया में आरजे रिया के साथ आप सभी बने रहिएगा। और हमारे कार्यक्रम में 6 क्वेश्चंस भी होंगे, 6 नहीं तो 5 क्वेश्चंस एकदम मस्ट है, और मैं 5 क्वेश्चंस लेकर आऊंगी हर दिन। उसमें से फिर मैं एक दिन आप सभी को वो इनाम राशि वाला भी विनर बनाऊंगी। तो आप सब इंजॉय कीजिएगा हमारे कार्यक्रम को, और बस बताइएगा आज सर जी को, यानी हमारे अमन सर जी को, कि रिया का आना दिल धड़काना कैसा लगा आप सभी को गुड मॉर्निंग के साथ। तो अब चलती हूँ क्योंकि आज बहुत मैं व्यस्त हूँ, मेरा भी दिल नहीं कर रहा अब सबको छोड़कर जाने का। तो चलिए, अब मुझे इस कार्यक्रम से निकलने की इजाजत दीजिए क्योंकि ये ट्रायल शो था, और अब मैं चलती हूँ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सुनते रहिए रेडियो गाना दिल से, और बजाते रहिए हमारा रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, आपका दिन मंगलमय हो।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 noon in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: कम्मा है, जग चुप जा तू बाहर जहाँ तेरी अम्मा है।
1: इधर तू आ आ,
0: जा जा घर तू जा जा,
1: अरे आ आ इधर तू आ आ,
0: जा जा।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के एक बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 2 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

अरे हुस्न चला कुछ ऐसी चाल दीवाने का पूछना, हुस्न चला कुछ ऐसी चाल दीवाने का पूछना, प्यार की कसम।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

जिधर में शोले ही शोले, दिल है आखिर कैसे न डोले। हाय देखो जिधर में शोले ही शोले, दिल है आखिर कैसे न डोले।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 4 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 5 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग आप सभी को अपनी प्यारी सी रेडियो दोस्त आरजे रिया की तरफ से। और दोस्तों, आप सब की प्यारी सी रेडियो दोस्त आरजे रिया आप सब के बीच हाजिर हो चुकी है। और वो भी कहाँ पे हाजिर हुई है आप सबको पता है ना। आप सबको उम्मीद करते हैं कि पोस्टर मिल चुका है, बट अभी हमारे कुछ दोस्त अभी मिलादुन्नबी में जो हैं तैयारी कर रहे हैं, तो इस वजह से अभी बहुत लोग हमसे जो है सॉरी लेकर बोल कर भेज दिए हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बस मैं भी एक घंटे के लिए आई हूँ, ज़्यादा देर नहीं रहूँगी आप सबके बीच। बस मैंने सोचा कि आज आती हूँ, मुझे खुशी का ठिकाना ज नहीं है। तो दोस्तों, बस हमारी स्टूडियो की घड़ी बता रही है 5:09 हो चुके हैं, और आज है कौन सा दिन, आज है वेडनेसडे, और आज है वेडनेसडे, तारीख है, आज बता देती हूँ, आज है तारीख 26 अगस्त। और 26 अगस्त के दिन जिन दोस्तों का बर्थडे है या जिन दोस्तों का एनिवर्सरी है, उनको हार्दिक आरजेरिया की तरफ से शुभकामनाएं। और आप सुन रहे हैं, आपने ट्यून किया है रेडियो गाना जो दिल से सुनते हैं आप सभी। और क्योंकि अभी मैं नहीं आई हूँ, तो मुझे थोड़ा सा समझा करो ना यार, समझा करो, हो जाएगी आदत। अभी क्या ना कि नए बच्चे जब आते हैं ना दुनिया में, तो थोड़ा सा गोद में जाकर देखते हैं कि कौन मेरी माँ है, कौन मेरी मौसी है, कौन मेरी आंटी है, कौन मेरी दादी है, कौन मेरी नानी है। तो मैं भी समझू कि दुनिया में अभी आई हूँ, और अभी तो मुझे आँख भी नहीं खुला है। तो चलिए मैं रेडियो गाना पे आँख अपना खोलती हूँ आप सबके बीच, आप सबकी प्यारी सी रेडियो दोस्त आरजे रिया खान आप सबके बीच हाजिर हो चुकी है। और शाम बहुत ही खूबसूरत है, इसलिए मैंने वो धुन सुनाया था आप सभी को, शाम मस्तानी मदहोश किए जा। तो ये गाना नहीं सुनाया था, वो मैंने धुन सुनाया था। तो चलिए, ये गाना तो मेरी तरफ से बनता, फिर मैं आती हूँ तो कुछ लोग मैसेज किए थे, और जब वो क्या है ना कि खिचड़ी जैसा खिचड़ी बन रहा था ना, तो सब लोग भाग गए। तो चलिए कोई बात नहीं है, एक घंटा मैं रहूंगी, आप लोगों का दिमाग खाऊंगी, नहीं भी खाऊंगी तो मैं खुद का अपना दिमाग खाऊंगी। चलिए गाना एंजॉय कीजिए। गाने के बोल बस बहुत ही खूबसूरत है। तू

कहना चाहूंगी कि सर्वर इशू है और बस सर्वर इशू की वजह से मेरे गाने भी चुप हो जाते हैं और मैं भी चुप हो जाती हूँ, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मारो जाकर सर्वर को कि क्यों ऐसा कर रहे हो। गाना

हेलो दोस्तों, क्या है ना कि सर्वर प्रॉब्लम बहुत है, बहुत ज़्यादा सर्वर प्रॉब्लम है। और पता नहीं अमन सर का कौन सा सर्वर है, ये मुझे पता नहीं कि बार बार बंद हो जाता है एकदम। हमें नहीं लगता कि कोई अच्छा सर्वर है इनका तो, क्योंकि बहुत परेशानी है और इतना भी जल्दी जल्दी सर्वर बंद नहीं होता है। पता नहीं इनका कौन सा सर्वर है जो बंद होता है बार बार, और ठीक से प्ले भी नहीं होता है गाना, एक भी गाना ठीक से प्ले नहीं होता है और सर्वर भाग जाता है, तुरंत से भाग जाता है। बल्कि यहाँ पे नेट अच्छी खासी है और नेट का कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तो बस वहाँ से ही सर्वर डाउन हो जाता है। और पता नहीं और मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आता। तो चलिए, कहाँ चलूँ मैं, कहीं भी नहीं चलती हूँ। चलूँ चलूँ चलूँ कहाँ कहाँ चलूँ कहाँ चलूँ, आप लोगों को लेकर मुझे समझ में नहीं आता। तो

0: नहीं बताऊंगी।
1: तुझे दिल की बात बता दूं?
0: नहीं नहीं नहीं नहीं

0: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉट स्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार मिक्स मस्ती शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार थीम चॉइस में सुनिए दिए गए थीम शब्द पर आधारित गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉट स्टार की ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉट स्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना। बचाते रहो दिल से।
1: हाय हेलो नमस्ते गुड इवनिंग सत श्री अकाल राधे राधे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन। आ चुका हूं लेकर आज का बहुत ही प्यारा प्रोग्राम जिसका नाम है स्टार मिक्स मस्ती, और मस्ती भरे गाने के साथ साथ बहुत हर तरह गाने शामिल होने वाले हैं। और जो भी दोस्त, जैसे कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो रिक्वेस्ट नहीं कर पाते हैं रेडियो हॉटस्टार के एप्लीकेशन से, वो मुझे मेरे जो मेन नंबर है 9135841232 यानी 9135841232 पे वो मुझे डायरेक्टली वहाँ कॉल कर सकते हैं। अगर कॉल करेंगे तो हम उनके गाने को जरूर शामिल करेंगे। फिलहाल मेरे पसंद गाने एंजॉय कीजिए और आते हैं इस गाने के बाद आप सभी का वेलकम कर, एंजॉय द ट्रैक।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे और सभी दोस्तों का वेलकम करते हैं। सबसे पहले जुड़ने वाले हमेशा की तरह हमारे सरफू भाई यानी सरफराज पटेल जी साउथ अफ्रीका से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और प्रीति रायदास जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। आपका भी लिखते हैं, नमस्कार सर जी कैसे हैं, मैं तो बहुत ही स्मार्ट हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं प्रीति जी। और ओके, और आत्माराम पाटिल जी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम करते हैं आत्माराम पाटिल जी। बबीता जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं बबीता जी। और अशोक देशमुख जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी अशोक देशमुख जी। ज्योति खटवड़े जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी और उनके साथ साथ। ओके, और ज्योति जी के साथ साथ हमारे कौन से गोविंदा खंडाटे जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। गजानन सलोकार जी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम करते हैं जी। और सर्वजीत सेठी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और जुड़ने वाले दोस्तों में नाम है हमारे राकेश शर्मा जी का, बहुत बहुत वेलकम करते हैं राकेश शर्मा जी। और दीपक कुमार गायकवाड़ जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और सुनील चौहान जी भी जुड़ चुके हैं तो वेलकम करते हैं। और रवि लोधी जी जुड़ चुके हैं एमपी से, आपका भी वेलकम करते हैं। विष्णु चंद्र जी जुड़ चुके हैं तो आपका भी वेलकम है विष्णु जी। और काजल झक्का जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं। और अगर नंदलाल जी जुड़ चुके हैं इनका भी वेलकम करते हैं। और यहाँ पे लाइव चैट में देखूँ तो लाइव चैट में हमारे यानी कि सोनू जी हैं, विष्णु चंद्र जी हैं और आमना खान जी हैं, नागेश्वर धाकर जी हैं, एमडी फैज आलम जी हैं और जितने भी दोस्त हैं एमडी गुलबाज जी हैं, मतलब सभी का। और प्रियंका जी सभी का वेलकम वेलकम वेलकम करते हैं। और राजेश कुमार जी भी जुड़ चुके हैं, इनका भी वेलकम करते हुए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। और सुनीता गोप जी जुड़ चुकी हैं, आपका भी वेलकम है। तो प्रोग्राम का आगाज करते हुए सबसे पहले आज जो मैं गाना प्ले करने वाला हूँ दीपक कुमार गायकवाड़ जी का, आया तेरे दर पे दीवाना। बिल्कुल मैं दीवाना आपके दर पे आ चुका हूँ लेकर ये मस्ती भरा प्रोग्राम, एंजॉय कीजिए। और इसके बाद फिर शामिल करते हैं आप सबके गाने।
1: जो बंदिशें थी जमाने की तो

बिल्कुल, ये दीवाना आपके दर पे आ चुका है, मतलब रेडियो हॉटस्टार पे हाजिर हो चुका है आप सबके लिए लेकर ये मिक्स मस्ती का मस्ती भरा शो। और राजीव चौधरी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। नमस्कार कर निशांत राय बोले जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और हमारे ये सुरिंदर पाल जी यानी भोला जी जुड़ चुके हैं पंजाब से, वेलकम करते हैं आपका भी। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि आज का सबसे पहला मस्त गाना प्ले हुआ है, मजा आ गया। अगला गाना आप ही का है भाई विष्णु चंद्र जी, अगला गाना जी ये सुनना चाहते हैं, कोई जाने कोई ना जाने, दो परवाने होते हैं दीवाने। तो एंजॉय कीजिए इस गाने को और आते हैं इस गाने के बाद

0: अल्लाह अल्लाह वाह क्या गाना है, सुनकर मजा आया ना आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। राधा कृष्ण गोप जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी और लिखते हैं सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। ज्योति खटवाड़ी जी लिखते हैं कि हर दिल में मोहब्बत हो, हर घर में बरकत हो और हर चेहरे पर मुस्कान हो, ईद उल मिलाद उन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। थैंक यू सो मच। ये फीडबैक
1: अमन जी आपने मेरा गाना प्ले किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी भाई और बहनों को, सभी सुनने वालों को आज मिलाद उन नबी का मुबारक दिन है, सभी को मुबारकबाद। और आने वाले दिनों में रक्षाबंधन है, तो सभी भाइयों बहनों और सुनने वालों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। मैं दीपक गायकवाड़ सिवनीमालवा मध्य प्रदेश से।
0: जी बिल्कुल, और मैं यानी रक्षाबंधन के दिन स्पेशल रक्षाबंधन प्रोग्राम करने वाला हूँ, क्योंकि उस दिन सिर्फ रक्षाबंधन माने वाले गाने ही शामिल होंगे। यानी कि इस फ्राइडे को रक्षाबंधन स्पेशल शो होगा, तो आप सब तैयार रहेंगे एक से बढ़कर एक रक्षाबंधन वाले गाने सुनने के लिए। अजय कुश जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं अजय कुश जी आपका, और ये रोहतक से है। और सुनील कुमार जी लिखते हैं कि अमन भैया हम भी जुड़ गए हैं। जी वेलकम करते हैं आपका भी। और ये है हमारे शायद हरिद्वार वाले हैं, है ना जी भाई सुनील कुमार जी? अच्छा ये बांका बिहार वाले, ओके सॉरी। हाँ तो इन बांका बिहार वाले सुनील कुमार जी बहुत बहुत वेलकम करते हैं। मुबारक हुसैन जी ये जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और विष्णु जी लिखते हैं कि अमर जी बहुत बहुत धन्यवाद मेरा गाना प्ले करने के लिए। रवि लोधी जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है। जी वो तो मुझे पता है। राकेश शर्मा जी लिखते हैं कि लाजवाब सॉन्ग सुनाने के लिए बहुत ही धन्यवाद देते हैं। इसी बात पर अगला जो डिमांड है, ज्योति खटवटे जी लेकर बहुत ही प्यारा गाना आई है इन पल पल दिल धड़कन के साथ, ऐसा कुछ गाना है तो सुनाएंगे इनके गाने को। और ये गाना शायद मैं पहली बार सुनने वाला हूँ, शायद इंजॉय कीजिए।

ज्योति खंडोड़ी जी, बिना कुछ कहे सुने और पूरा गाना सुने बनती है आज का सॉन्ग विनर। बहुत बहुत आपको बधाई हो। एक गाना और सुन सकते

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे और सच में बहुत सारे फीडबैक भी आ चुके हैं। शिल्पा बेन जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं शिल्पा बेन जी। और यानी किशन पाल शाके जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम करते हैं किशन पाल शाके जी। और यहाँ पे शिल्पा बेन जी लिखते हैं कि ये गाना मुझे मैसेज खोलने दीजिए, ये लिखते हैं हेलो अमन जी हम भी जुड़ गए हैं और ये सॉन्ग ये कोई जाने कोई ना जाने बहुत ही बढ़िया लगा है। अच्छा, इससे पहले वाला गाने के बारे में बात कर रही है, ओके। और निशांत राय बोले लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना चल रहा है, ओके जी। और दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं कि यानी कि कहते हैं कि असली भारत देखना है तो गांव में जाइए, और मैं कहता हूँ असली भारत अगर सुनना है तो रेडियो हॉटस्टार पर। अच्छा, थैंक यू सो मच भाई। अरुण मंडल जी लिखते हैं कि अर्जमन जी मैं भी जुड़ चुका हूँ, नमस्कार वेलकम करते हैं आपका भी। और आत्माराम पाटिल जी लिखते हैं कि उम्मीद करते हैं अमन सर जी हम भी जुड़ गए, हाँ बिल्कुल वेलकम करते हैं आपका भी। और सर्वेज भगत जी भी हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। फिलहाल अगला जो डिमांड है वो यानी कि प्रीति रायदास जी का है और ये सुनना चाहती हैं मन के सवरिया बन गई ला तू। इंजॉय कीजिए इस गाने को, बहुत प्यारा गाना है।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। और यहाँ पे यानी प्रीति रायदास जी लिखते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया मेरा गाना प्ले करने के लिए। और यहाँ पे बबीता जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। रवि लोधी जी लिखते हैं कि क्या कहते हैं, अच्छा ओके, तो अब मैं उसको चेक करता हूँ कि आपने कौन सा गाना भेजा है, देखना पड़ेगा। और ये फिर सुनते हैं।
1: अर्जय अमांसर जी, शुभ संध्या, नमस्कार, नमस्ते जी। प्रीति जी अपने गाने में शामिल किए, बहुत बहुत धन्यवाद देते। और सभी भाई अपने गाने में शामिल किए, सभी को भी धन्यवाद देते, आपको भी धन्यवाद देते। थैंक यू सर,
0: वेलकम जी। और यहाँ पे ज्योति जी लिखते हैं कि थैंक यू अमन जी मेरा गाना सुनवाने के लिए और गाने को पसंद करने के लिए। जी बिल्कुल, एक गाना और सुन सकते हैं क्योंकि आज बनी है आप सॉन्ग विनर। राकेश शर्मा जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा लाजवाब भोजपुरी गाना सुनने को मिला, मजा आ गया एकदम सुन के। दिलजीत राजी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम, लिखते हैं कि नाइस सॉन्ग सुनने को मिल रहा है। और जागीर खान जी जुड़ चुके हैं जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से, वेलकम करते हैं, आपका भी वेलकम सलाम। और राधा कृष्ण को भी लिखते हैं कि भोजपुरी गाना सुन के तो दिल खुश हो गए, बहुत बहुत धन्यवाद यह तरहानी हम। ओके जी, तो इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो मैं प्ले करता हूँ। किन का दो गाने मुझे दिख रहे हैं फिलहाल, ये गाना मैं प्ले कर रहा हूँ यानी कि रुबीना नाथ जी का। इनके बाद भाई राधे जी आपका गाना प्ले करूँगा, फिलहाल रुबीना नाथ जी का, इन्जॉय कीजिए।

0: आई होप के यही गाना हो, क्योंकि इसके जैसे एक और गाना भी मुझे मिल रहा है, लेकिन पता नहीं ये गाना है या नहीं।
1: बेगानी राहों पे मुझे तू यूं मिली मेरी जान।
0: और एमडी फैज जी और गुलबा जी और कायनात जी यहाँ पे सभी, और आरजे सोनी जी, ये सभी लोग यहाँ पे लाइव चैट में धमाल मचाए हुए हैं सभी।

0: बिल्कुल, मुझे नहीं पता ये दोनों में कौन गाना था, ये भी था या नहीं था, ये भी मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि मुझे सही में नहीं पता था। वैसे फीडबैक भी मेरे पास आए हुए हैं। काजल झक्का जी, अगर ये आपका ये फीडबैक है तो फीडबैक लिख दीजिए, फरमाइश है तो फरमाइश लिख दीजिए, उसके बाद ही मैं आपके वॉइस को प्ले करूँगा। और शाहिद जी लिखते हैं कि गुड इवनिंग अमन सर जी, मैं भी शो से जुड़ चुका हूँ और ये सॉन्ग जो अच्छा ओके ओके ओके ओके ठीक है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। और ये फीडबैक सुनते हैं।
1: अरजय अमन सर जी, रुमीना नाथ जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर,
0: वेलकम जी आपका भी। और अजय कुछ लिखते हैं कि गाना बहुत ही प्यारा है, और रणवीर सिंह जी लिखते हैं कि गाना ये बहुत अच्छा लग रहा है नंबर वन पे। और मिशाल अंगद जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो यानी राधे जी का है, सुनना चाहते हैं, सुनो ससुर जी, तो सुनो ससुर जी।
2: हाँ,

0: ओके और यहाँ पे रुबीना नाजी का मैसेज है कि दोनों में से कोई नहीं था। कोई बात नहीं, आप अपना गाने का लिंक मुझे भेज दीजिए, मैं फिर से दोबारा कोशिश करता हूँ आपके गाने को प्ले करने की।
1: आहा, आहा, आजा, आजा,

0: चलो चलो चलो जल्दी चलो भाई, और फिलहाल फीडबैक सुनते हैं।
1: मन की सवरिया बन गई मातू,
0: क्या बात बा?
1: चुपके से का कई मातू
0: है,
1: नस नस में तू गई समा।
0: अच्छा,
1: डांग दिला परेशानी में गजब के।
0: अच्छा
1: रोगी।

0: बहुत अच्छा गाना, काफ़ी सुंदर गाना था। थैंक यू आपको जो गाना फरमाइश किए हैं प्रीति जी, थैंक यू आपको, थैंक यू। सभी दोस्तों का गाना भी बहुत अच्छे अच्छे बज रहे हैं। मैं काजल सीतामढ़ी से सुन रही हूँ
1: जी। धन्यवाद देते हैं आपका भी। और निशाद राय बोल लेते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना था। सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं, इनकी भी सुन लेते हैं।
2: आरजे अमन सर जी, राधे जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर,
1: वेलकम सर जी। और अरुण मंडल जी लिखते हैं कि अमन सर जी सावन खत्म होने वाला है और अच्छा ओके, तो मतलब यानी कि कौन सा गाना है जरा सा मुझे बताएंगे प्लीज, मुझे समझ में नहीं आ रहा। समर लिखते हैं सनम व्यवफा का, तो कौन सा गाना आपको चाहिए जरा मुझे बताइए। रणवीर सिंह जी लिखते हैं कि ये गाना मुझे अच्छा लगा, ये सुनो ससुर जी वाला। और प्रमोद कुमार जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं। इसी बात पर जो डिमांड है वो प्रियंका जी का है, ये सुनना चाहती हैं तुम तो धोखेबाज हो। हाँ धोखेबाज तो हूँ, इंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। और यहाँ पे कपूर चंद जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और सर्वेज भगत जी,
1: आरजे अमन सर जी, प्रियंका जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम सर जी। और यहाँ पे अभिषेक तिवारी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी अभिषेक तिवारी जी। और नंदलाल जी लिखते हैं कि ये प्रियंका जी गाना मुझे बहुत ही पसंद आया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। रवि सिंह, ये रणवीर सिंह गेढ़ाला लिखते हैं कि तुम तो धोखेबाज हो, गाना मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। और राधाकृष्ण को भी लिखते हैं कि सुपर डिमांड के लिए थैंक यू सो मच प्रियंका जी। दत्ता कदम जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं दत्ता कदम जी। और राकेश शर्मा जी लिखते हैं कि लाजवाब संघ सुपर से भी ऊपर वाला गाना है। और ये विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि गाना बहुत ही कमाल का है, मज़ेदार गाना है, सुनने को बहुत अच्छा लग रहा है। ओके जी, निशांत राय बोले लिखते हैं बहुत ही प्यारा गाना। इसी बात पर मेरा जो डिमांड है वो मैं भोजपुरी का यानी कि तड़का लगाने वाला हूँ, चूँकि मैं तो खाना नहीं बनाता हूँ, खाना बनाती हैं आरजे आकांक्षा जी, वो भी यानी कि तड़का लगाकर बहुत ही टेस्टी, इसलिए वो कहते हैं भोजपुरी का तड़का लगा रहे हैं। तो हमें तो खाना बनाने आता नहीं है, लेकिन फिलहाल भोजपुरी वाला गाना सुनवा रहे हैं, वो भी यानी कि प्रमोद कुमार जी का, बहुत ही प्यारा गाना बा, इंजॉय कीजिए इस गाने।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। और ओके और फिलहाल यहाँ पे फीडबैक भी मेरे पास बहुत सारे पहुंचे हैं और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि लाजवाब डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। और सर्वेश भगत जी अच्छा यहाँ पे यानी कि काजल झका जी लिखते हैं गाना मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं सुनते हैं इनकी।
1: आरजे अमन सर जी प्रमोद कुमार जी अपने गाने में शामिल।
0: अरे यानी प्रमोद कुमार नहीं ये यानी कि प्रमुख कुमार जी हैं प्रमुख
1: ये उनको धन्यवाद देते हैं आपको भी धन्यवाद देते हैं थैंक यू सर।
0: ओके जी और रणवीर सिंह जेठालाल लिखते हैं कि गाना मुझे भोजपुरी बहुत ही अच्छा लगा। हाँ और यहाँ पे राकेश शर्मा लिखते हैं कि भोजपुर ये भोजपुरी वाला यानी कि तड़का लाजवाब लागल अच्छा सच में का। और कपूर चंद जी लिखते हैं कि ओके वहाँ भेज दीजिए। और एमडी जलील जी जुड़ चुके हैं बहुत बहुत वेलकम करते हैं जलील जी आपका भी। और ये क्या कहती हैं सुनते हैं।
2: थैंक यू अमन जी मेरा सॉन्ग सुनाने के लिए। इसी सॉन्ग की मैं दो लाइन सुनाना चाहती हूँ। तुम तो धोखेबाज

0: जाएंगे तो हाथ मलोगे। आओ आके चुम लो, प्यास ऐसे क्यों बढ़ाते हो। रोज रोज तुम जो सनम ऐसा करोगे, हम जो उठ जाएंगे तो आहें भरोगे। थैंक यू।
1: ओके जी, वेलकम है आपका भी। और यहाँ पे राजेश कुमार जी लिखते हैं कि लाजवाब भोजपुरी गाना सुन के मजा आ गई, मजा आ गई, मजा आ गई एकदम। और निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि वाह क्या गाना था, मजा आ गया इस गाने को सुनकर। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब डिमांड है। और ये क्या कहते हैं शिवम सिंह जी, सुनते हैं।
2: हाय अमन सर, मैं शिवम सिंह बोल रहा हूँ, यूपी उत्तर प्रदेश से। सर मैं ब्लाइंड हूँ, मैं आपको एक गाना भेज रहा हूँ। मुझे सॉन्ग रिक्वेस्ट करना नहीं आता है टेक्स्ट मैसेज में, तो मैं आपको वहाँ जो है कि मैं गाना जो है आपको नहीं रिक्वेस्ट भेज पाऊँगा सॉन्ग का, तो मैं आपको गाना गा के बता देता हूँ सर, आप प्ले जरूर करिएगा। गाना मैं आपको बता देता हूँ, तेरी है जमी तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान मेरे बख्शीश कर, ऐसे कुछ है सर, तो प्ले कर दीजिएगा।
1: ऐसे में तो अब मुझे ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं कौन सा गाना है। फिलहाल मैं अगला जो एक और भोजपुरी का तड़का लगाता हूँ, मतलब मुझे खाना बनाना नहीं आता है लेकिन भोजपुरी वाले गाने हैं तो थोड़ा सा इंजॉय करता हूँ। क्योंकि अब यहाँ तो यानी कि शादी हुई चाहे बर्बादी यानी तोहरत हुई, सुनवाते हैं इस गाने को इन शिल्पी राज के आवाज में। सुनना चाहते हैं गोविंदा खंडाते जी, इंजॉय कीजिए गोविंदा खंडाते जी इस गाने को।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे और इतना खुलियाम धमकी माय गॉड। अरे अरुण मंडल जी लिखते हैं कि भोजपुरी गाना सुनने में बहुत ही मस्त लग रहा है, मजा आ रहा है सुन सुन के। और कुंता बिनी जी लिखते हैं कि गुड इवनिंग अमन सर जी, मैं भी जुड़ गई हूँ जी, बहुत बहुत आपका वेलकम करते हैं। और लिखते हैं कि सभी दोस्तों गाना मुझे अच्छा लग रहा है, सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग है। ये फीडबैक सुनते हैं।
1: अरजय अमन सर जी, गोविंदा खटाले जी और प्रमुख जी दोनों भाई अपने अपने गाने में शामिल किए, दोनों भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम सर जी आपका भी। और रवि जी जुड़ चुके हैं, आरके रवि जी दिखते हैं कि वैसे तो मेरा यानी कि पूरा नाम रविंदर कुमार रवि है। अच्छा आरके रवि जी जो मैंने यानी कि समझा था मैंने दे दिया था है कि नहीं लेकिन अच्छा है। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि लाजवाब लाजवाब लाजवाब भोजपुरी, ये तड़का सुनने को मिल गया, मजा आ गया सुन के इस गाने को। रणवीर सिंह जी लिखते हैं कि भोजपुरी गाना बहुत ही अच्छा लगा है, मजा आ गया सुन के। और ये फीडबैक सुनते हैं क्या कहती हैं।
2: हेलो अमन जी,
0: बोलिए।
2: वैसे तो मुझे भोजपुरी सॉन्ग समझ में नहीं आते हैं।
0: अच्छा,
2: पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आते हैं।
0: हाँ,
2: तो
0: बिल्कुल।
2: मैं तो उसी में ही खुश हो जाती हूँ कि हाँ शायद ये सॉन्ग अच्छे ही होंगे, बिकॉज मुझे थोड़ा सा भोजपुरी समझ नहीं आता है।
0: कोई बात नहीं, जो समझ में आ जाएगा।
2: म्यूजिक होता है और जो भी होता है एक्स वाई जेड वो बहुत ही प्यारा होता है, इसलिए मैं यही कहूँगी कि भोजपुरी सॉन्ग भी अच्छे हैं। थैंक यू,
0: धन्यवाद। भले आपको समझ में नहीं आया लेकिन जो भी है। और अरविंद कुमार जी लिखते हैं कि वाह क्या चॉइस है अमन सर जी, मजा आ गया सुन के, गाने पर डांस कर रहा था मैं। अच्छा सच में, इधर मैं भी कर रहा था यार स्टूडियो में। राकेश शर्मा जी लिखते हैं कि अमन सर जी आज तो भोजपुरी ये तड़के की लाइन जो लगी हुई है ना बहुत ही प्यारी पर। हाँ बहुत सारे हैं लेकिन मैं बीच बीच में प्ले कर यानी करूँगा है ना। और काजल झका जी लिखते हैं कि गाना बहुत ही शानदार है, अच्छा लग रहा है। ये फीडबैक, ये क्या कहते हैं
3: सर। गाना काफी अच्छा चल रहा है। मैं शिवम सिंह, यूपी उत्तर प्रदेश से। बर्बादी होई बाकी शादी होई मोरे तोरे से।
0: हाँ, हाँ,
3: ये गाना काफी अच्छा है। और जो मैंने गाना आपको बताया है वो इस तरह है। तेरी है जमीन ये तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान ये बख्शीश कर, ऐसा ही सर कुछ गाना है। तो आप इसको प्ले करने की कोशिश जरूर कीजिएगा सर।
0: ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, आपके गाने को मैं ढूंढ रहा हूँ, शायद हो सकता है कि मुझे आपका गाना मिल गया है, आई होप। लेकिन फिलहाल एक गाने के बाद मैं कोशिश करूंगा गाने को प्ले करने के लिए। रवि जी लिखते हैं कि ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और रविंद्र सिंह जी लिखते हैं कि अमन सर जी आप मेरे मैसेज को पूरा क्यों नहीं पढ़। एक्चुअली देखिए मैं मैसेज को शॉर्ट करता हूं क्योंकि बहुत सारे मैसेज अगर लंबे लंबे मैं पढ़ने लगूं तो बहुत से दोस्तों के मैसेज भी छूट जाएंगे और अच्छा नहीं लगेगा। निशांत राय बोले लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग सुनने को मिल रहा है। अगला जो डिमांड है वह हमारे किन का है, जब मैं देखता हूँ राजेश कुमार जी का है, यानी कि कृष्णा कृष्णा बोल प्यारे, ये सुनना चाहते हैं ये गाना। एंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे फिर वे शामिल करते हैं पहले इसके बाद आइसक्रीम खा के हम लोग आएंगे।
1: जी राजेश कुमार जी अपने गाने में शामिल किए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको भी धन्यवाद देते हैं थैंक यू सर।
0: वेलकम जी और अपरमत कुमार लिखते हैं कि शानदार डिमांड चल रहा है राजेश कुमार जी का। राधाकृष्ण को लिखते हैं कि लिखते हैं दूर है आपसे तो कोई गम नहीं दुख दूर रह कर भी रेडियो हॉट स्टार को भूल जाने वाले हम नहीं। अच्छा और मुलाकात नहीं होती तो क्या हुआ आपकी आवाज़ किसी मुलाकात से कम नहीं। अच्छा सच में कहा निशान राय बोले जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना सुनने को मिल रहा है मज़ा आ रहा है सुन सुन के। और रणवीर सिंह जेठारा लिखते हैं कि ये कृष्णा कृष्णा बोल प्यारे और बहुत ही अच्छा गाना लगा है धन्यवाद देते हैं। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो संदीप सुतार जी का है ये आइसक्रीम खिला रहे हैं सभी दोस्तों को चलिए आप लोग भी खा लीजिए आइसक्रीम हम तो खाने जा रहे हैं भाई।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। और राकेश शर्मा जी लिखते हैं कि राजेश भाई का गाना मुझे बहुत ही सुपर से ऊपर लगा है, धन्यवाद देते हैं उनको। राजेश कुमार लिखते हैं कि थैंक यू सो मच अमन जी गाना प्ले करने के लिए। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं?
1: जय अमन सर जी, संदीप सुतार जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका। और कुंता बिनी जी लिखते हैं कि लाजवाब डिमांड के लिए संदीप सुतार जी को थैंक यू सो मच। पर और रणवीर सिंह जेठालाल लिखते हैं कि आइसक्रीम खाओगे ये गाना मुझे अच्छा लगा। रणवीर सिंह जेठालाल जी। अरविंद कुमार लिखते हैं कि ओके कोशिश करूंगा। रवि जी लिखते हैं कि आपकी आवाज सिर्फ शब्द नहीं जुनून का तूफान है, और सोए हुए जज्बातों को जगा दे वो आसमान है। जब बोलते हैं आप तो हर पन्ना मजल उठता है, और निराशा के अंधेरे में ही उम्मीद का सूरज निकलता है। अच्छा, थैंक यू सो मच सर जी आपका। और काजल शका जी लिखते गाना प्यारा लगा है। फिलहाल मुझे जिन्होंने वो सॉन्ग रिक्वेस्ट के माध्यम से किया है उनका मैं कोशिश करूंगा बीच में गाना जहां भी मुझे मौका मिलेगा उनका गाना प्ले करने के लिए। फिलहाल मैं ये गाना प्ले कर रहा हूँ आरजे सोनी जी का। और आरजे सोनी जी एंजॉय कीजिए अपने गाने को।

तारीख बा 28 तारीख के छुट्टी बा दिन आज हम लेवे खातिर रक्षाबंधन के दिन। एकदम मैंने बंधन के रेडी दिया।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे। और प्रमोद कुमार लिखते हैं एकदम मस्त डिमांड है, थैंक यू सो मच आरजे सोनी जी इतना प्यारा गाना डिमांड करने के लिए। और शिवम सिंह जी लिखते हैं जी भाई आपका मुझे गाना मिल चुका है, जैसे मुझे मौका मिलता है जहां फिट बैठता है आपका गाना मैं वहीं प्ले कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं?
1: आरजे अमन सर जी, आरजे सोनी जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर,
0: वेलकम सर। और यहाँ पे रणवीर सिंह जठरा लिखते हैं कि भोजपुरी गीत बहुत ही अच्छा लगा, ओके जी। और सुनील चौहान जी लिखते हैं कि दीवारों के पास कोई अपना सा पुकारता है और बिना देखे ही दिल किसी पर निशार होता है, ये रेडियो वाले आरजे भी अजीब जादूगर होते हैं जिनकी आवाज पर पूरा शहर फिदा होता है। अच्छा सच में का? ओहो ऐसा है क्या? और आ गई हिमेश की बहन जी।
2: अमन जी एक सॉन्ग था, आइसक्रीम खाओगे कश्मीर जाओगे, तो आइसक्रीम तो आप अपने घर पे भी खा सकते हो, कश्मीर जाके आइसक्रीम क्यों खानी है। और ये हिमेश रेशमिया का जो गाना था वो भी काफी अच्छा
0: जी, मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि वो कहते हैं ना लोहा लोहे को काटता है, अब वहाँ पे यानी कि ठंडी का मौसम है और ठंड में जाकर आइसक्रीम खाने का मजा ही कुछ और होता है। हम तो ठंडी के दिनों में भी आइसक्रीम खाते हैं और ठंडा पीते हैं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, इसलिए यानी ठंडी में ठंडी का मजा लीजिए तब मजा आएगा, है कि नहीं। और दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं कि अमन जी हाँ एक्चुअली मुझे यही समझ में आता है ना, वो समझ में नहीं आएगा तो मैं कैसे प्ले कर सकता हूँ। और यहाँ कुंता बनर्जी लिखते हैं कि बहुत ही ये यानी खूबसूरत डिमांड है, थैंक यू सो मच आरजे सोनी जी इतना प्यारा गाना सुनवाने के लिए। प्रमोद कुमार लिखते हैं कि आरजे सोनी जी का पसंद बहुत ही बेहतरीन लाजवाब है। नंदलाल जी लिखते हैं कि अलका याग्निक का ये गाया हुआ बहुत ही शानदार खूबसूरत भोजपुरी गाने के लिए, थैंक यू सो मच आरजे सोनी जी का। इसी बात अगला जो डिमांड है बबीता जी का, मैंने कहा था बबीता जी सुनवाता हूँ आपकी पसंद का ये गाना।
3: नमस्ते अमन सर जी, मैं ये गाना भेज रही हूँ आप देख लेना, और उस गाने में आपको दोनों बिटिया रानी को, नरतम जी को, रेडियो हिसार के जितने हमारे दीवाने दीवाने सबको शामिल करती हूँ, सुनवा देना, धन्यवाद।
0: ओके सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार। जो दीवाना बनाते फीडबैक शामिल करते हैं, पहले ये
1: आरजे अमन सर जी, बबीता जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर
0: जी। और यहाँ पे अनिल मेहता जी क्या कहते हैं, इनकी भी सुन लेते हैं।
2: बहुत ही लाजवाब गाने चल रहे हैं, एक से एक बढ़कर गाने चल रहे हैं। आरजे अमन सर
0: जी,
2: आपका लाइव शो प्रोग्राम में मैं भी जुड़ गए हूँ, अनिल मेहता सूरत गुजरात से।
0: वेलकम जी आपका। और यहाँ पे कपूर चंद जी लिखते हैं कि सुपर सॉन्ग सुनने को मिल गया है। और काजल जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है। और रणवीर सिंह जेठाला लिखते हैं कि ये तीतर की बात आगे सुनाएंगे, गाना अच्छा लगा। इसी बात लग रहा जो डिमांड है हुकुमचंद जांगर जी का है, सुनना चाहते हैं ये गाना, यूपी बिहार लौटने आई है।

0: लूट ला पूरा यूपी बिहार के लूट ला। फीडबैक मैं बता चुके हैं, मेरे पास बहुत सारे सुनते हैं।
1: अरजे अमन सर जी, हुकुम चंद जंग अरजे अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर
0: जी आपका। और यहाँ पे राजेश कुमार लिखते हैं कि सुपर हिट रोमांटिक सॉन्ग के लिए थैंक यू सो मच। और दत्ता जी लिखते हैं कि बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, सभी गाने बहुत ही प्यारे प्यारे लग रहे हैं। और प्रियंका जी क्या कहती हैं?
2: पतली कमर मटका के
0: हाय,
2: नैन से नैन लड़ा के, पतली कमर मटका के, नैन से नैन लड़ा के, नागिन सी बलखा के हो, दिल वालों के दिल का करार लूटने मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने। बहुत ही प्यारा सॉन्ग था, मुझसे रहा नहीं गया इसलिए मैंने ये सॉन्ग गाया। और इससे पहले वो बबीता जी ने जो सॉन्ग सुनाया था वो भी काफी अच्छा था।
0: धन्यवाद देते हैं। और रणवीर सिंह जी लिखते हैं कि मुरादाबाद यूपी वाले, आई हूँ यूपी बिहार लूटने, गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि अमन जी गाना मस्त चल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मजेदार गाना चलाने के लिए। दोस्तों का भी धन्यवाद देते हैं। और दिल वाले के दिल का करार लूटने आई हूँ यूपी बिहार लूटने, गाना मुझे बहुत ही पसंद है। और कुंता जी लिखते हैं कि हुकुम चंद जांगर जी के पसंद, लाजवाब, थैंक यू सो मच उनको। और राकेश शर्मा जी लिखते हैं कि लाजवाब लाजवाब लाजवाब सॉन्ग है, मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने, अच्छा लगा है। और सुनील चौहान जी लिखते हैं कि बिल्कुल सही कहा आपने सुनील चौहान जी। हुकुम चंद जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच अमन जी गाना प्ले करने के लिए। इसी बात से अगला जो डिमांड है वो मैं प्ले करने वाला हूँ काजल झक्का जी का, ये सुनना चाहती है। मैं कन्याकुमारी हूँ, अच्छा इंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: होती है।
1: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे और बहुत सारे फीडबैक भी आए हुए हैं। दत्ता जी लिखते हैं कि ये काजल जी गाना मुझे बहुत ही सुपर हिट लगा है, धन्यवाद देते हैं उनको। और काजल झका जी लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। और सर्विस भगत जी क्या कहते हैं,
2: आरजे अमन सर जी काजल झा जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
1: वेलकम जी आपका। और रणवीर सिंह जेठाला लिखते हैं कि गाना मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, ओके जी। और राहुल पासी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी राहुल पासी जी। और क्या कहते हैं, ये
3: दिल वालों के दिल का करार लूटने में आई हूँ यूपी बिहार लूटने। अमन सर जी ये सॉन्ग बहुत बढ़िया लगा,
1: धन्यवाद देते हैं आपको। अभी विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि ये गाना भी बहुत ही अच्छा लगा है, मस्त लगा है, धन्यवाद देते हैं काजल झका जी को। निशांत राय लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है। और सुनील चौहान जी लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर गाना है, जी बिल्कुल सही कहा आपने। और कुंता बेनी जी लिखते हैं कि वाह वाह वाह, इतनी प्यारी डिमांड के लिए थैंक यू सो मच काजल झका जी। और कपूर चंद जी लिखते हैं कि ओके। और निशांत राय अच्छी हो चुका है, फिलहाल अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ, अच्छा ये फीडबैक सुनने के बाद।
4: हेलो अमन जी, ये सॉन्ग बहुत अच्छा था, कन्याकुमारी है और आगे समथिंग समथिंग, बट इसमें ये बोलती है ना कि दरोगा जी हमारी रपट लिखा दो, मेरे पीछे पड़े हैं आज 10 लड़के। इस सॉन्ग को सुन के मुझे एक सॉन्ग याद आ गया, मेरे पीछे पड़े हैं आज 10 लड़के, मिलन होगा अभी एक रात की दूरियां हैं, क्योंकि मुझे तो श्रीदेवी का सॉन्ग याद आ गया था तो मैंने गा दिया, थैंक यू।
1: तो ये कहती है कि मेरे पीछे पड़े हैं 8-10 लड़के, मतलब 8 और 10 लड़के की गिनती बता रही है, एग्जैक्टली गिनती नहीं बता रही है, बस ऐसी कह रही है। फिलहाल अगले जो मैं डिमांड प्ले करने वाला हूँ, एक भाई साहब बार बार मुझे वो अपना वॉइस रिकॉर्डिंग भेज रहे थे, क्या नाम था उनका, शिवम जी शायद उनका ये गाना है, मैं प्ले कर रहा हूँ, इंजॉय कीजिए। आई होप कि यही उनका यही गाना हो, आई होप।

0: और काजल ठकाजी लिखते हैं कि आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे गाने को पसंद करके फीडबैक देने के लिए। और ये क्या कहती हैं, सुनते हैं।
1: अमन जी, ये सॉन्ग बहुत ही अच्छा है जो मूवी बर्निंग ट्रेन का है, और इसकी दो लाइन मैं आपको सुनाना चाहती हूँ।
0: अच्छा।

सभी तेरी। बस इतना ही, आगे याद नहीं आ रहा है। बाकी ये सॉन्ग बहुत ही प्यारा है जो कि गॉड के लिए है। और आज मुझे थोड़ा सा कहीं बाहर जाना था मेला घूमने, बट हमारे यहाँ पे बहुत तेज बारिश आ रही है तो इसलिए मुझे ये प्रोग्राम सुनने को मिला जो कि काफ़ी अच्छा चल रहा है।

बिल्कुल सभी का है। तू और निशांत राय बोले लिखते हैं वाह बहुत लाजवाब गाना सुनने को मिला है। रणवीर सिंह जठरा लिखते हैं कि ये तेरी है जमीन तेरा आसमां गाना अच्छा लगा है। और कभी कभी नेट फुल हो जाता है, मैं स्टॉप हो जाता हूँ। और यहाँ पे ये लिख के विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत ही प्यारा लगा है। और कुंता जी लिखते हैं कि बहुत खूबसूरत डिमांड है, थैंक यू सो मच। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा लाजवाब सॉन्ग है। इसके बाद अगला जो डिमांड है हमारे नंदलाल यादव जी का, मैं प्ले कर रहा हूँ। नंदलाल यादव जी, एंजॉय कीजिए।

0: साहब।
1: नंदलाल जी, सच में आपका भी गाना बहुत ही प्यारा है और आज भी बनते हैं आप सॉन्ग के विनर। तो दो दोस्त आज बने हुए हैं, ज्योति खटवड़े जी और नंदलाल जी, दोनों को बहुत बहुत बधाई हो। और मेरे पास फीडबैक भी बहुत सारे आए हुए हैं, शामिल करता हूँ मैं। राहुल पासी जी लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत ही पसंद लगा है और ये फीडबैक।
2: आरजे अमर सर जी, नंदलाल यादव जी अपने गाने में शामिल किए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
1: वेलकम जी। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब चॉइस है, नंदलाल यादव जी की धन्यवाद देते हैं उनको। दत्ता जी लिखते हैं कि नंदलाल जी आपका गाना मुझे बहुत ही प्यारा लगा है। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि बहुत ही सुपर डिमांड के लिए धन्यवाद देते हैं, रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे। और अजय कुछ लिखते हैं कि ये मनमोहक सॉन्ग है जी बिल्कुल। और निशांत बड़ी लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग सुनने को मिल रहा है। अगला जो डिमांड है वो दत्तक करम जी का है, सुनना चाहते हैं कम से कम इतना कहा होता कि होने लगा तुझसे प्यार है।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे फीडबैक भी मेरे पास आते हैं। नंदलाल जी लिखते हैं कि मेरा गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और यहाँ पे यानी कुंता बनी जी लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग सुनने को मिला, थैंक यू सो मच। और सर्वेश भगत जी,
1: आरजे अमर सर जी, दत्ता कदम जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका। और ये प्रियंका जी क्या कहती है,
2: कम से कम इतना कहा होता कि होने लगा मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है। कम से कम इतना कहा होता कि होने लगा मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है। थैंक यू, बहुत प्यारा सॉन्ग था ये।
0: ओके, धन्यवाद देते हैं आपको। और दादा जी से धन्यवाद देते हैं मुझसे जी गाना प्ले करने के लिए। और निशांत है बोले जिससे कि सॉन्ग बहुत ही सुपर डुपर हिट है, धन्यवाद देते हैं उनको। और इसी बात पर हमारे ये कपूर चंद जी लिखते हैं कि गाना बहुत ही प्यारा है, नाइस सॉन्ग है। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि कम से कम इतना कहा होता, होने लगा मुझसे प्यार है, सच में कम से कम कहा होता यार, और दिल खुश हो गया है ना। राहुल पासी जी लिखते हैं कि ये कम से कम वाला गाना मुझे बहुत ही प्यारा लगा है। और ये फीडबैक सुन लेते हैं, क्या कहते हैं अनिल कश्यप जी।
3: अमन भैया नमस्ते, मैं अनिल कश्यप सिवान बिहार से जुड़ गया हूँ, और बहुत समय पहले ही अपना सॉन्ग रिक्वेस्ट में फरमाइश डाल दिया हूँ, तो गाने अच्छे से चल रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है सर।
0: धन्यवाद देते हैं। लेकिन फिलहाल हम यानी कि अभी यानी कि प्रेम की कहानी शुरू किए हैं, अभी तो मतलब यानी कि प्रेम की शुरुआत हुई है, आगे होने दे, देखिए क्या होता है। और अजय कुछ लिखते हैं कि बहुत ही शानदार गाना है, ओके सदाबहार गाना है। और यहाँ पे विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि ये भी गाना मुझे बहुत ही प्यारा लगा है। अगला जो हमारा डिमांड है वह इट्स कुमार जी का है, यानी विवेक कुमार जी का, सुनवाते हैं। शुरू हो रही है बिल्कुल प्रेम कहानी।

बिल्कुल यानी कि प्रेम कहानी शुरू हो चुकी है और बहुत सारे फीडबैक भी आ चुके हैं मेरे पास। और यहाँ पे यानी कि हाँ सोनू जी भाई, अगला गाना मैं आप ही का प्ले करने वाला हूँ।

0: और यानी कि प्रमोद कुमार जी लिखते हैं कि भाई ये डिमांड बहुत ही प्यारा लगा इट्स कुमार जी का। और राहुल पाठक जी लिखते हैं कि शुरू हो रही है प्रेम कहानी, बहुत ही प्यारा डिमांड है, धन्यवाद देते हैं उनको। और शिल्पा बैन जी लिखते हैं कि शुरू हो रही है प्रेम कहानी, बहुत ही बढ़िया गाना सुनने को मिल रहा है। बबीता जी लिखते हैं कि नमस्ते अमन सर जी, और प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, इससे बढ़कर गाने सुनने को मिल रहे हैं, मज़ा आ रहा है सुन के। और कर रहे हैं मुझे बहुत ज्यादा, ये क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: हेलो अमन सर जी नमस्कार, गुड इवनिंग। तो हम भी जुड़ चुके हैं आपके रेडियो हॉटस्टार सुनने के,
0: धन्यवाद देते हैं आपको। रवि मर्जी लिखते हैं शुरू हो रही प्रेम कहानी, लाजवाब अल्टीमेट सॉन्ग सुनने को मिल गया, मजा आ गया सुन के इस गाने को। कुंता बिनी लिखते हैं वाह क्या ब्यूटीफुल डिमांड है, थैंक यू सो मच, मजा आ गया सुन के। और निशांत राय बोले लिखते हैं कि बहुत ही बढ़िया गाना प्ले हो रहा है। और रश्मि नामदेव जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और सर्वजीत शेट्टी लिखने के कार्यक्रम शानदार चल रहा है। और यहाँ पे यानी विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि सर जी आज के सभी गाने बहुत मस्त प्ले हो रहे हैं, बहुत मज़ा ही आ रहा है। अगला गाना जो डिमांड है वो हमारे यानी सोनू जी का है, सुनना चाहते हैं।

0: अच्छा
1: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे दीवाना बना दे दीवाना बना दे। प्रमोद कुमार लिखते हैं कि भाई सोनू जी की चॉइस बहुत ही प्यारी है, ऑसम है। और ये क्या कहती हैं ये प्रियंका जी, खुल जा सिम सिम, जल्दी से मैसेज, नेटवर्क बहुत डिस्टर्ब कर रहे यार, मैसेज जल्दी नहीं ओपन हो पा रहा है।

0: बहुत तेज पानी, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ पे तो बहुत तेज बारिश हो रही है और ये गाना उसी से थोड़ा सा मिलता जुलता, क्या पूरा ही मिलता जुलता लग रहा है। बाकी बहुत ही अच्छा सॉन्ग था, थैंक यू।
1: वेलकम जी आपका भी। और गजानंद जी लिखते हैं, तू मेरा जानू है, दिलबर है, हीरो फिल्म का शानदार गाना सुनने को मिल गया, मजा आ गया सुन के इस गाने को। और कपूर चंद जी लिखते हैं कि अच्छा ओके जी मैं भूल जाऊंगा भाई। और काजल झका जी लिखते हैं कि ये तू मेरा हीरो है गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, थैंक यू सो मच। और राजेश कुमार जी लिखते हैं कि सुपर हिट पसंद है, ओके जी। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि तू मेरा हीरो है, तू मेरा जानू है, ये वाला गाना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि ये गाना बहुत ही मस्त है, जबरदस्त है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी। और रवि लोधी जी लिखते हैं कि ये तू मेरा हीरो है बहुत ही ये प्यारा गाना है, जिस भाई की भी फरमाइश है बहुत अच्छी है जी बिल्कुल। और शिल्पा बेन जी लिखते हैं कि तू मेरा हीरो है गाना मुझे बहुत ही पसंद है, थैंक यू सो मच। दिगंबर जी क्या कहते हैं?
2: अमन सर जी, जी मैंने एक सॉन्ग रिक्वेस्ट में सॉन्ग डाला है, अच्छा। अगर आपकी कृपा हो तो सुना दीजिएगा सभी।
1: कोशिश करूंगा बिल्कुल। और यहाँ पे रश्मि नामदेव जी लिखते हैं कि अपनी वॉइस कैसे भेजते हैं, हाँ इसी जगह देखिए जहाँ पे आप मैसेज कर रही हैं ना उसी में नीचे एक लिखा होगा, यानी कि छोटा सा एक माइक बना होगा, माइक पर क्लिक कीजिएगा और अलाउ कर दीजिएगा, अलाउ कीजिएगा तो वो उसको परमिशन मिल जाएगा रिकॉर्डिंग करने के लिए। वहाँ पे इन माइक पर क्लिक करके आप रिकॉर्डिंग कीजिएगा, फिर उसको स्टॉप कीजिएगा, यानी पीछे जहाँ स्टॉप लिखा होगा स्टॉप कीजिएगा, स्टॉप करके उसको सुन लीजिएगा कि वो आपने जो रिकॉर्डिंग किया है वो रिकॉर्डिंग हुआ है कि नहीं। फिर उसके बाद वहाँ पे सेंड बटन होगा नीचे, वहाँ से भेज दीजिएगा, मेरे पास आपका रिकॉर्डिंग आ जाएगा बिल्कुल। और कुंता जी लिखते हैं कि ये वाला ये सोनू जी की डिमांड बहुत ही प्यारी है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारे सर्वजीत सेठी जी का, ये सुनना चाहते हैं जिंदगी बन गए हो तुम, बिल्कुल जिंदगी बन गए हो तुम, इंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: बिल्कुल सुंदर था कि मुरत जी जिंदगी बन गए हो तुम, बन गए हो तुम, बन गए हो तुम। फिलहाल फीडबैक मेरे पास आ चुके हैं बहुत सारे। दत्ता जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार सुपर गाना है, सुपर, और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और ये हिम्मत सिमे की बहन जी क्या कहती हैं?
1: तू मेरा जानू है,
0: अच्छा
1: तू मेरा

0: धन्यवाद देते हैं आपको भी। और यहाँ पे रवि लोधी जी लिखते हैं कि जिंदगी बन गए हो तुम, वाह बहुत ही प्यारा गाना है। और जी जी बिल्कुल आ जाएगा, जल्दी नंबर आने वाला है, टेंशन मत लीजिए रवि लोधी जी। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि जिंदगी बन गए हो तुम, सुपर चॉइस जी बिल्कुल। और फिडबैक
1: आर जे अमन सर जी, सरवित सेट्ठी जी अपने गाने में शामिल किए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी। और दिगंबर जी,
2: अमन सर जी,
0: जी जी
2: सिर्फ रिक्वेस्ट करके एक बार सॉन्ग को देख लीजिएगा कौन सा है।
0: ओके ठीक है, मैं देख लूंगा, टेंशन मत दीजिए। और यहाँ पे काजल झा जी लिखते हैं कि ये गाना बहुत ही प्यारा है, जिंदगी बन गए हो तुम। और यहाँ पे रश्मि नामदेव जी ये यहाँ पे लिखते हैं कि फेवरेट सॉन्ग है जिंदगी बन गए हो तुम, वेरी नाइस सॉन्ग सुनने को मिल रहा है। और शिल्पा बेन जी लिखते हैं जिंदगी बन गए हो तुम, सुपर से भी ऊपर, मुझे ये गाना बहुत ही पसंद है, धन्यवाद देते हैं। राहुल पासी जी लिखते हैं कि जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम, गाना बहुत ही प्यारा है। इसी बात पर अगला जो डिमांड है दो दोस्तों की है, एक यहाँ पे रितु जी की और रितु जी के साथ साथ हमारे रवि मोहड़े जी की, दोनों की एक ही पसंद है और ये पसंद मेरी पसंद है, मतलब ये गाना आज के दिन न प्ले हो तो समझिए कि इसके बिना प्रोग्राम अधूरा लगता है। तो सुनवाते हैं अपनी पसंद का ये प्यारा सा गाना, एंजॉय कीजिए।

0: बिल्कुल के चांद जैसन चेहरा तुहार दिल हमार ले गई ला। और यानी कि विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि खुल जा भाई, बहुत देर लगाना है या। हाँ लिखते हैं, गाना बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। और धर्मेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं धर्मेंद्र सिंह जी, और बहुत दिन बाद आए हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका। और ये लिखते हैं कि अमन शाह जी गुड इवनिंग, और अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि रवि महाराज जी के पसंद शानदार लगी है, धन्यवाद देते हैं। और सर्वजीत सर जी
1: धन्यवाद, अमन सर जी आपने मेरा गीत चलाया और जिन्होंने मेरे गाने पर फीडबैक दिए उनका भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम बहुत ही सुपरहिट चल रहा है, तो सुनते रहिए ये हॉटस्टार जो सबको दीवाना बना दे। मैं सरोजी सेठी फाजिलका पंजाब से,
0: धन्यवाद देते हैं आपको भी। और
2: जय अमन सर जी, रितु जी और अभी मोहाले जी अपने गाने में शामिल किए हैं, एक बहन एक भाई दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। अशिल्पा बेन जी लिखते हैं कि तो है का बतलाई हो, गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, अच्छा ओके। और रवि लोधी जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है भोजपुरी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और काजल झका जी लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत पसंद है, धन्यवाद देते हैं। और यानी कि विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं गाना चलाने के लिए। और ये क्या कहती हैं, इनकी सुनते हैं पहले।
3: सर ये सॉन्ग तो बहुत ही अच्छा है, जो कि कई बार सुन लिया है तो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आता है, बट नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा चल रहा है और सभी सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा अटक अटक के चल रहे हैं। बाकी ये सॉन्ग कई बार सुन रखा है तो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया, ताकि जो कि बहुत अच्छा है।
0: थैंक यू सो मच आपका भी, लेकिन नेटवर्क अटक अटक के चल रहा है यहाँ तो फिलहाल। हाँ नेटवर्क इशू है, मुझे भी समझ में आ रहा है। गजानंद जी लिखते हैं कि हमारे दोस्त रवि महर्जी के पसंद का गाना लाजवाब लगा है, धन्यवाद देते हैं। इसके बाद अगला जो डिमांड है वह आरती तिवारी जी का है, ए बलम परदेसी। सुनवाते हैं इस गाने को, एंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे और बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं। और यानी कि प्रमोद जी लिखते हैं कि ये रितु जी और रवि मुखर्जी के पसंद मुझे काफी अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं उनको। और आमना खान जी जुड़ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका। और बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। और फिलहाल यहाँ पे अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि हमारे तरफ रेडियो तो बिल्कुल सही चल रहा है, अच्छा। और ये फिर
1: अरजय अमन सर जी, आरती तिवारी जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर,
0: वेलकम जी। और फीडबैक सुनते हैं।
2: अमन भैया, मुझे लगता है कि आपने जो अभी सॉन्ग बजाया था चांद जैसा चेहरा तो हर दिल हमार ले गई, तो इसमें उदित नारायण जी की वॉइस थी और उदित नारायण जी का कॉपी करना मुश्किल है, बट आपने उस मुश्किल चीज़ को भी पार किया। जब आपने उनके साथ म्यूजिक पे वो टर्न लिया था कि चांद जैसा यहाँ से और तोहे का बतलाई हो यहाँ पे, ये दो जगह पे आपने ऐसा ट्यूनिंग मारा कि मतलब वो दिल को छू गया। तो मुझे लगता है कि आप एक प्लेबैक सिंगर भी हो सकते हैं।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और निशांत राय बोले लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग, सुनने को मिल गया, मजा आ गया सुन के। रवि मर्जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद अमन सर जी हमारा गाना प्ले करने के लिए, तहे दिल से शुक्रिया आपका, और सभी दोस्तों का भी तहे दिल से शुक्रिया इतने अच्छे फीडबैक देने के लिए और हमारा गाना पसंद करने के लिए। और इसी के साथ ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं, ईश्वर आपको हमेशा हंसता खेलता रखे, खुश रखे, हैप्पी रखे।
0: धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
3: मैं रवि मोहाड़े बैतूल से।
0: ओके जी। और रवि लोधी जी लिखते हैं कि ये सभी श्रोताओं की जो पसंद है सुपर सुपर हिट चल रही है। और राजा सका जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
4: ए बर्मा परदेसी,
0: अच्छा,
4: ए मनमा के राजा, ए बर्मा परदेसी, ए मनमा के राजा, भूंगा अखिया मिंगा के तू भूंगाई बातना,
0: ना ना ना कबू ना,
4: ए बर्मा परदेसी। बहुत अच्छा गाना आरती तिवारी जी का, काफी अच्छा गाना, बहुत अच्छा, थैंक यू आरती तिवारी जी आपको।
0: ओके जी। और यहाँ पे विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि आज के सभी गाने बहुत अच्छे अच्छे प्ले हो रहे हैं, मजा आ रहा है सुन के। सुनील चौहान जी लिखते हैं कि बहुत बढ़िया गाना अमन जी, मजा आ गया सुन के एकदम। और अकुंता बेन जी लिखते हैं कि अमन सर जी भोजपुरी सॉन्ग अच्छे चल रहे हैं और कुछ समझ में आते ही नहीं है, फिलहाल प्रोग्राम अच्छा चल रहा है। थैंक यू सो मच, समझ में भी नहीं आ रहा है, माई गॉड। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि ये चांद जैसन, अच्छा ओके। और राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं कि भोजपुरी गाने का डिमांड शानदार लगा है, धन्यवाद देते हैं। और रवि महाराज जी लिखते हैं कि ए हमारे दिल जनिया वाला गाना भी बहुत अच्छा लगा है। और आरती तिवारी जी लिखते हैं कि चांद जैसन चेहरा तुहार दिल हमार ले गई और ए बलम परदेसी, ये दोनों गाना मुझे बेहद अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। इसी बात का अगला जो डिमांड है दो दोस्तों की है, एक हमारे वो रवि लोधी जी हैं और साथ ही साथ इन्हीं के साथ में ये निशांत राय बोले जी, पता नहीं जब भी यानी किसी का अच्छा गाना देखते हैं उसके साथ वो अपना गाना तो उसी गाने के वो यानी कॉपी पेस्ट कर देते हैं, यानी उसी गाने के वो डिमांड कर देते हैं। कोई बात नहीं, फिलहाल दोनों की पसंद पे एंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: बिल्कुल दिल दीवाना, ना जाने कब खो गया और तूने ऐसा देखा कि कुछ कुछ कुछ हो गया, यानी कुछ कुछ होता है ना, इसीलिए। और प्रमोद जी लिखते हैं सुपर डिमांड के लिए थैंक यू सो मच, और रवि लोधी जी लिखते हैं कि हमारा गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, और फीडबैक सुनते हैं।
1: गुड सॉन्ग लगर का
0: आवाज़ समझ में नहीं आ रही, आप क्या कहना चाहते हैं धर्मेंद्र जी। और सुनील चौहान जी लिखते हैं कि लिखते हैं कि यानी केहू चांद से तो ये प्यार करेला, तो केहू सूरज से प्यार करेला, हम ओकरा से प्यार करनी जे रेडियो हॉटस्टार से प्यार करेला। अच्छा सच में का। और गजानंद जी लिखते हैं कि रवि यानी लोधी जी और निशांत रायबोले जी की पसंद मुझे अच्छी लगी है, धन्यवाद देते हैं दोनों दोस्तों को। और निशांत रायबोले लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन जी गाना प्ले करने के लिए, और कुंता जी लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत लाजवाब डिमांड है, थैंक यू सो मच। और ये क्या कहती हैं सुनते हैं।
2: दिल दीवाना ना जाने कब खो गया,
0: अच्छा जी,
2: तूने से देखा कि कुछ हो गया, से देखा कि कुछ हो गया,
3: बहुत ही प्यारा सॉन्ग था
0: जी बिल्कुल। और शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि ये दाग द फायर का गाना सुपर हिट लगा है, और विष्णु चौहान यानी कि चंद्र जी लिखते हैं कि दिल दीवाना ना जाने कब खो गया, बहुत ही अच्छा लगा गाना, धन्यवाद देते हैं। और रवि मोहड़े जी लिखते हैं कि ये भी गाना सुपर सुपर सुपर बेहतरीन पसंद है। दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं कि रात की तन्हाइयों में कोई साथी चाहिए, और अब और जब बात है रेडियो की तो रेडियो हॉटस्टार चाहिए। ओके जी भाई दीपक कुमार गायकवाड़ जी, और ये क्या कहते हैं।
4: अभी इस बेचारे अनिल कश्यप दिल दीवाने का टाइमिंग 9 बज जा रहा है, पता नहीं क्या सवार हो गया है।
0: अच्छा कोई बात नहीं, फिलहाल अरविंद कुमार जी लिख रहे हैं कि बहुत बढ़िया सॉन्ग है अमन सर जी। ओके, और फिलहाल अगला जो डिमांड है मैं सुनवा रहा हूँ किन का, हमारे ये दिगंबर जी का शायद है, दिगंबर जी सुनना चाहते हैं ये गाना, तो दिगंबर जी इंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे। और ये क्या करती हैं?
1: अमन जी, हम इतना अच्छा फीडबैक देते हैं, सॉन्ग गाते हैं, बट आप हमारे सॉन्ग को काट देते हैं और हमारे सॉन्ग की तारीफ भी नहीं करते हैं।
0: अच्छा जी।
1: प्लीज जब भी मैं सॉन्ग गाती हूँ तो कम से कम उसको पूरा तो सुना दीजिए।
0: अच्छा जी, ओके, कोशिश करेंगे। ओके, और यहाँ पे अरुण मन्ना जी लिखते हैं कि आज के सभी गाने मस्त मस्त चल रहे हैं। विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि हम तो बस इतना जानते हैं, हमें रेडियो हॉट स्टार मिला जो दीवाना बना दिया है। ओके जी, और कपूर चंद जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना चल रहा है जी, बिल्कुल। और मंगेश दशमुख जी लिखते हैं कि नमस्ते मंसर जी, राधे राधे, और हम लोग सुन रहे हैं प्रोग्राम, धन्यवाद देते हैं, वेलकम करते हैं आप सभी का। और शिल्पा बेन जी लिखते हैं कि हमें क्या खबर थी, ये गाना मैंने पहली बार सुना है, बहुत ही अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। अजय कुछ लिखते हैं कि अजय कुछ कौन सा, अच्छा ठीक है, कोशिश करूंगा। फिलहाल अगला जो डिमांड है हमारे अनिल कश्यप जी का है। ओके अनिल कश्यप जी, एंजॉय कीजिए अपने।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बनाते हैं। और यहाँ पे नीतू सुरन जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं नीतू जी आपका। और देखते हैं कि प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, निशांत भाई बोले वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है, और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि दिगंबर जी का भी डिमांड बहुत

0: बात है अमन सर जी, दिल खुश हो गया और आपने हमारा सॉन्ग सुन लिया, आनंद ही आ गया।
1: ओके जी, कोई बात नहीं। और फिलहाल यहाँ पे अनिल कश्यप जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
2: भैया हम तो कल भी प्यार में थे और आज भी प्यार में हैं और कल भी प्यार में रहेंगे, फाइनली आज से प्यार में हैं हम। नाइस सॉन्ग मेरा गाना प्ले करने के लिए, और बाकी जितने लोग फीडबैक देंगे उन सबको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सबको।
1: ओके जी, और यहाँ पे क्या कहते हैं, मेरा कभी कभी ना मैसेज अटक जा रहा है। मैसेज अटकने का अर्थ ये हुआ कि नेट स्लो हो जा रहा है। राहुल पाचे जी लिखते हैं कि अमन सर जी ये गाना बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद देते हैं उनको भी। विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि ये दिल ही तो है जो इन किसी पर आता है और कभी आने तो मचल जाता है, थैंक यू रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे, धन्यवाद देते हैं। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि बहुत ही शानदार डिमांड है। और ये क्या कहती हैं हिमेश रेशमिया की बहन जी,
3: ये सॉन्ग बहुत ही प्यारा था, लेकिन इसी की तरीके से एक सॉन्ग और है, तुम्हें बोलना पसंद है।
1: अच्छा।
3: मुझे बोलते हुए तुम्हें हंसना पसंद है।
1: अच्छा जी।
3: मुझे हंसते हुए तुम, बस इतना ही फर्क है तेरी मेरी पसंद में, तुमसे सब कुछ पसंद है और मुझे पसंद हो तुम। ये सॉन्ग वैसे ही था जैसे ही मैंने जो सॉन्ग सुनाया, बाकी सॉन्ग बहुत अच्छा था, थैंक यू।
1: धन्यवाद देते हैं आपको भी इस गाने के लिए भी। और अजय कुछ लेते हैं कि ओके देखता हूँ मैं। दीपक को मैं एक बार जी लिखते हैं कि इस इन सीधी सादी जिंदगी में आई एक बहार है, जीवन में जब से आया रेडियो हॉट स्टार है, और तन्हाई में साथी और खुशी में हम सफर बन जाता है, हर दिल के धड़कन को अपने वो सुरों से सजाता है, जहां गानों की महफिल हो वहां हर पल शानदार है, रेडियो हॉट स्टार है तो रोशन मेरा संसार है, रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे, धन्यवाद। आर के रवि जी लिखते हैं कि अच्छा जी, और यहाँ पे यानी कुंता बनी जी लिखते हैं कि ये शानदार डिमांड के लिए धन्यवाद देते हैं। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो यानी कि सिया जी का है, और सिया जी सुनना चाहती हैं ये लंबी लंबी कैसी है, इन्जॉय कीजिए इस गाने को।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार, जो आपको दीवाना बना दे, दीवाना बना दे, दीवाना बना दे। और फिर आ चुके हैं एमडी रोज, ये रोजित खान जी लिखते हैं कि अमन सर जी प्रोग्राम मस्त चल रहा है, मजा आ रहा है सुन के। और फीडबैक
1: आदरणीय प्रियंका जी, आपने ये क्या कर दिया, मेरे सॉन्ग को गुनगुनाने के बजाय आपने किसी दूसरे सॉन्ग को बीच में ला दिया। बट कोई बात नहीं, आपका आवाज़ बहुत अच्छा लगता है जब रेडियो पे आता है, मजा आता है। थैंक यू आपको।
0: ओके, धन्यवाद देते हैं आपको भी इस फीडबैक के लिए। और यहाँ पे यानी कि प्रमोद कुमार जी लिखते हैं कि यसिया जी की डिमांड लाजवाब लगी है। और बबीता जी लिखते हैं कि नमस्ते मसा जी, ये आपका गाना बहुत पहले का प्ले हो चुका है, टेंशन मत लीजिए। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि यसिया जी का डिमांड बहुत ही प्यारा लगा है, धन्यवाद देते हैं। और ये रवि जी लिखते हैं कि यहाँ पे शाम होते ही ये चिरागों को जला देता हूँ, और जिंदगी जिंदगी वो तेरी हर एक याद से सजा लेता हूँ, ढलते सूरज की उस लगती हुई रंगीनिया में अपने कुछ टूटे हुए ख्वाब मिला लेता हूँ। वाह वाह क्या बात है। अरविंद कुमार लिखते हैं कि आपकी भी ये पसंद का कमाल है अमन सर जी, मजा आ गया इस गाने को सुनकर, जितना भी बार भी मैं सुनता हूँ मन नहीं भरता है। अच्छा सच में, ये सुनते हैं क्या कहती हैं प्रियंका जी।
2: अमन जी ये सॉन्ग अच्छा ही होगा, बस मुझे ये समझ में आया कि 4 महीने हो मैं पसीना बहुत आता है। बाकी सॉन्ग आप लोगों को तो सबको समझ में आता है, पर हम लोगों के तो सर के ऊपर से जाता है। फिर भी हम लोग बहुत जोश से ये भोजपुरी सॉन्ग सुनते हैं, पर फिर भी इंजॉय करते हैं। थैंक यू सॉन्ग सुना।
0: और यहाँ पे काजल झका जी लिखते हैं गाना बहुत ही प्यारा लगा है, धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि अमन जी आपकी पसंद भी अच्छी लगी है, धन्यवाद देते हैं। और कुंदा जी लिखते हैं कि दोनों गाने लाजवाब हैं, थैंक यू सो मच। और निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा डिमांड है, इसी बात पर जो डिमांड है वो मैं प्ले करने वाला हूँ, चूँकि ये डिमांड लेके आई हैं यानी कि कायनात जी। और कायनात जी सुनना चाहती हैं यानी चुम्मे में चमन प्राश, ये एक बार इस गाने को यहाँ पे मैं प्ले कर चुका हूँ ऑलरेडी, आज नहीं मतलब बहुत दिन पहले, लेकिन फिलहाल आज एक बार फिर से सुनवाते हैं, एंजॉय कीजिए इस गाने को। और स्पेशली ये डेडिकेट है हमारे यानी के प्रमुख जी को, और यानी के कुमार भाई जी को, और

0: को भटका दिया।
1: कहाँ रे?
0: ये सूर की तरह दिए? ये सूर? ये इन्ना आया है तो? ये कचतुर नार हम छोड़

0: बिल्कुल भाई, ये चमन पास वाला चुम्मा तो भाई बहुत ही कमाल का है। वैसे फीडबैक मेरे पास आए हुए बहुत सारे सुनते हैं। क्या कहते हैं बबीता जी, कुछ नहीं आया है आपका, बिल्कुल खाली है आपका ऑडियो। और देवेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं देवेंद्र सिंह जी। और साथ ही साथ यहाँ पे राहुल पासी जी रहते हैं। वाह, ये कैनाज जी का गाना मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, अच्छा लगा है। ओके, ये क्या कहते हैं प्रियंका जी।
1: अमन जी, अगर चुम्मे में ही च्यवनप्राश है तो फिर तो घर पे च्यवनप्राश लाने की जरूरत ही
0: नहीं है।
1: और ये सॉन्ग मैंने संडे वाले दिन इवनिंग में आपने ही सुनाया था ये वाला सॉन्ग, क्योंकि वो फर्स्ट बार था और ये सेकंड बार है। और वाकई में आज पता चला कि चुम्मे में ही च्यवनप्राश है, बाकी में बहुत ही प्यारा सॉन्ग है जो कि फर्स्ट टाइम ही सुना गया है। थैंक यू,
0: वेलकम जी आपका भी। और ये यानी कि किशन पाल जी लिखते हैं कि अब तक का सबसे बेहतरीन सॉन्ग लगा है मुझे। अच्छा, सच में कहा। दीपक मैं एक बार जी क्या कहते हैं।
2: अमन जी, ये गाना बहुत ही बढ़िया लगा, कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाते हैं आपके श्रोता भी, मजा आ गया। चुम्मे में च्यवनप्राश है
0: जी, बिल्कुल भाई च्यवनप्राश है। और आप भी इसका यानी सेवन किया कीजिए। निशांत है बोले जी लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब गाना है, मजा आ गया सुन सुन के। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि मस्त गाना लगा है जी, बिल्कुल सही कहा आपने। कपूर चंद जी लिखते हैं कि भाई आपका रुकिए गाना बजाते हैं यार, आप तो मुझे क्या ही बताएं। यानी कुंता बेन जी लिखते हैं कि ये कैनाज जी की पसंद बहुत ही शानदार लगी, डिमांड। और आमरा खान लिखते हैं कि जबरदस्त गाना है जी, बिल्कुल। अरविंद कुमार लिखते हैं कि ये वाला गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, मेरा यानी पैसा बच जाएगा। जी जी बिल्कुल, सेवन करते रहिए बच जाएगा पैसा। और ठीक है, ज्योति जी ने भी अपना गाना भेज दिया है। और हमारे क्या नाम है, यानी कि हमारे नंदलाल यादव जी ने भी अपना गाना भेज दिया है, दोनों का थैंक यू सो मच। धर्मेंद्र सिंह जी लिखते हैं कि अमन सर जी सॉन्ग सुनकर तो मजा आ गया बिल्कुल। और ये क्या कहती हैं, सुनते हैं।
3: नमस्ते अमन सर जी, मैं ये कह रही हूँ कि आपका गाना और चुम्मा वाला गाना जो चल रहा है, मुझे बहुत हंसी आ रही है, मज़ा भी आ रहा है। सारे दोस्त आज ऐसे ऐसे गाना भेज रहे हैं कि क्या बताऊं। मैं तो डेक में लगा दी हूँ, मोबाइल बाहर रख दिया हूँ। अच्छा। बस एंजॉय कर रही हूँ, काम में मस्त हूँ, मज़ा आ रहा है डेक में सुन रही हूँ इतनी आवाज़ में। और नेट भी सही चल रहा है, नहीं तो नेट काम ही नहीं कर रहा था मोबाइल में, मोबाइल बाहर रख दिया हूँ तो नेट चल रहा है।
0: अच्छा, चलिए अच्छी बात है। फिलहाल अगला जो डिमांड है हमारे रणवीर सिंह जेठालाल जी का है, सुनना चाहते हैं लगी सावन की फिर वो झड़ी है। फिर आते हैं तो यानी पूजा भास्कर जी का जो गाना है, बहुत खूबसूरत हो तुम, सुनवाते हैं अब आपको। लेकिन इनका डिमांड है वो मेरी आवाज में सुनना चाहती है, नहीं ये पॉसिबल नहीं है, अच्छा नहीं लगेगा।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बनाए। और यहाँ प्यार के रवि जी लिखते हैं कि मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि भोजपुरी के सारे गाने बज जाए तो क्या होगा, यहाँ पे सभी लोग भाग जाएंगे। गजानंद जी लिखते हैं कि लगी सावन की फिर वो झड़ी है, शानदार गाना सुनने को मिला, मजा आ गया सुन के। और यहाँ पे कुंता भी लिखते हैं कि बहुत खूबसूरत डिमांड है, थैंक यू सो मच। और ये क्या कहते हैं सुनते हैं
1: अमन जी, ये सॉन्ग बहुत ही अच्छा था क्योंकि ये मेरी फेवरेट है।

0: चल पड़ी है। ये सॉन्ग बहुत ही प्यारा था और इसमें मुझे श्रीदेवी बहुत अच्छी लगती है, जो कि ये बारिश के टाइम का सॉन्ग है, तो ये सॉन्ग बहुत ही अच्छा था। थैंक यू।
1: ओके, इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो पूजा भास्कर जी का है, सुनवा रहा हूँ। बहुत खूबसूरत हो तुम, सच में बहुत खूबसूरत हो तुम। ये गाना स्पेशली मेरी सुंदरता की मुरजी को डेडिकेट है, दिल से।

ओके ठीक है, मैं अपनी ही आवाज में सुना देता हूँ क्योंकि डिमांड है, तो डिमांड तो भाई पूरी करनी पड़ेगी चाहे जैसे भी करनी पड़ी है। ओके फिलहाल इस गाने को थोड़ा सा सुनते हैं, फिर हम सुनवाते हैं अपनी आवाज में। ओके

बिल्कुल, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। और यहाँ पे राधा कृष्ण गोपी जी की बहुत खूबसूरत डिमांड भी है। अच्छा सच में का? और ओके जी, और गजानंद जी लिखते हैं कि ये पूजा भास्कर जी के पसंद बहुत खूबसूरत लगी है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि ये गाना मस्त लगा है, थैंक यू सो मच। और निशांत अयबोले जी लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग सुनने को मिल गया, मजा आ गया सुन के। राहुल पासी जी लिखते हैं कि ये पूजा भास्कर जी के पसंद बहुत अच्छी लगी है। और अकुंता जी लिखते हैं कि बहुत लाजवाब डिमांड है। बिल्कुल, अगर दोस्तों की डिमांड होगी तो मैं बिल्कुल अपनी आवाज़ में गाना सुना दूंगा। फिलहाल अगला जो गाना मैं प्ले कर रहा हूँ, जो आज की फर्स्ट एंड विनर है, हमारे ज्योति खटवाड़े जी, उनकी पसंद का गाना।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार, जो दीवाना बना दे, दीवाना बना दे, दीवाना बना दे। और नंदलाल जी लिखते हैं कि सुपर हिट गाना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सच में ये गाना था प्यारा। ये फीडबैक
1: अमन जी, ये सॉन्ग था या गजल था जो भी था, बहुत ही अच्छा था। और ये जो पूजा जी ने, जो ये मेरी पूजा जी, जो कि उनको मैं प्यार से मिष्टी दो ही बोलती हूँ, उन्होंने बहुत ही मीठा सॉन्ग सुनाया। उसके लिए थैंक यू। मैं खुद भी इस सॉन्ग में डूब गई थी क्योंकि ये सॉन्ग ही इतना प्यारा था। थैंक यू पूजा।
0: ओके, और यहाँ पे यानी कि शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि थोड़ा सा बहुत ही बेहतरीन गाना है, सच में मजा आ गया सुन के गाने का। विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि बहुत लाजवाब गाना, मस्त गाना। ज्योति जी थैंक यू सो मच। और गजानंद जी लिखते हैं, ज्योति खटवड़ी जी के पसंद, बहुत बेहतरीन लाजवाब लगी है, धन्यवाद देते हैं उनको। कुंता बेनी लिखते हैं, वाओ ब्यूटीफुल डिमांड, ज्योति खटवड़ी जी थैंक यू सो मच फॉर दिस सॉन्ग। एंड राहुल पासे जी लिखते हैं कि ज्योति जी का गाना बहुत ही अच्छा लगा है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनको इस गाने के लिए। काजल झका जी लिखते हैं कि ज्योति जी की पसंद, ओ माई गॉड बहुत ही प्यारा है। अजय कोच जी लिखते हैं, ज्योति खटवड़ी जी आज छा गई हैं, सर जी दोनों गाने इनके मजेदार लगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि बेहतरीन डिमांड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं ज्योति जी को। विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि अच्छा ओके ओके ओके ओके ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। फिलहाल अगला जो डिमांड है यानी कि प्रमोद कुमार जी का है, और सुनवाते हैं मिलता जो प्यार ना तेरा। इंजॉय कीजिए इस गाने को।

बिल्कुल मिलता जो प्यार ना तेरा तो भाई हम तो मर जाते हैं। और गजानन जी लिखते हैं दोस्त आदरणीय प्रमोद जी के पसंद मुझे बहुत ही पसंद आई है, धन्यवाद देते हैं। निशांत राय बोले जी लिखते हैं नंबर वन गाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इसी बात पर अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ हम अपने शाहिद अंसारी जी का, शाहिद अंसारी जी इंजॉय कीजिए इस गाने को।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे और ज्योति सिंह अमन जी थैंक यू सो मच और सभी दोस्तों को भी धन्यवाद देते हूँ गाने को पसंद करने के लिए फीडबैक देने के लिए। कुंता जी लिखते हैं कि बहुत ही ये प्यारी डिमांड है, थैंक यू सो मच भाई। यानी प्रमोद जी, शाहिद जी, प्रमोद जी लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए, दोस्तों को भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। और गजानंद जी लिखते हैं कि मैं शाहिद जी प्रमोद जी सभी के पसंद शानदार, धन्यवाद देते हैं। और अनिल कुमार जी हरिद्वार वाले जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका। ये कुछ लिखते हैं कि ओके ओके ओके ओके ठीक है। और कपूर चंद जी लिखते हैं कि नाइस सॉन्ग चल रहा है सुन के। और राहुल पासे जी लिखते हैं कि ये तुम ना हुए मेरे, गाना अच्छा लगा। इसके बाद अगला जो डिमांड है हमारे यानी कि कपूर चंद जी का, भाई कपूर चंद जी मैं सुनाऊंगा आपके गाने को, एंजॉय कीजिए।

0: यानी गुस्सा बहुत खतरनाक है, एकदम यानी कि नाके पर गुस्सा रहता है, हम क्या ही बताएं। और यहाँ पे कपूर जान जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। और
1: क्या है नारी जिस संग लागे मोरे नैना, उस पे सारी दुनिया वारी, नाच न जाने आंगन टेढ़ा।
0: तो क्या बात है, निशांत रायपुरा जी लिखते हैं बहुत ही प्यारा गाना के लिए। गजानंद लिखते हैं कि ये कपूर चंद जी की पसंद बेहतरीन लगी है, और कुंता बिन लिखते हैं कि ये कपूर चंद जी की डिमांड शानदार लगी है, और राहुल पासी जी लिखते हैं कि नाइस सॉन्ग है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि ये फिल्म मेरे पापा द ग्रेट का गाना बहुत ही प्यारा लगा है। इसी बात अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ, दो दोस्तों की नहीं सॉरी इन तीन दोस्तों की, हमारे अशोक देशमुख जी, सर्वेश भगत जी और आत्माराम पाटिल जी।
2: नमस्कार अमन सर।
0: नमस्कार।
2: मैं निम्बोरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख। आज के प्रोग्राम में एक गीत सुनना है, फिल्म का नाम है हेलो ब्रदर और गाने का बोल है चांदी की डाल पर सोने का मोर। ये गीत सबसे पहले आपको और आपकी सुंदरता की मूर्त को और जितने भी हॉट स्टार सुनने वाले श्रोता है उन सबको ये गीत सुनवा दीजिए सर, धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर जी। और सर्वेश भगत जी भी शामिल है, तो शायद आज वो सो गए होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि देर कर दिया मैंने।
3: आरजे अमन सर जी, शुभ संध्या, नमस्कार, नमस्ते जी। आज हमारा फरमाइश का फिल्म है हेलो ब्रदर सर, गाने का बोल है चांदी की डाल पे सोने का मोर। और स्टार जो सबको दीवाना बनाते, सभी बड़े को प्रणाम, सभी छोटे को आशीर्वाद। हम सर्वेश भगत अजरजंदा जिला वैशाली बिहार से बोले, हमारा परिवार सतीश भगत, हेमंत भगत, किशोर भगत, आनंद शेखर, सोनी कुमार, मनु कुमारी, सूरज कुमार, मनोज जायसवाल, अशोक देशमुख भाई जी, आत्माराम पाटिल जी, सही सैयद जी, आर जे अमन सर जी, सुंदरता की मुरत जी, आर जे वंशिका जी, आर जे आकांक्षा जी, आर जे सोनी जी, आर जे एम एस परमार जी, और सभी आरजे और सभी भाई और सभी बहन और सभी लिसनर इसमें शामिल है, सभी को सुना दीजिए। जयराम जी के अमर सर जी।

0: चांदी की डाल पर सोने का मोर, सोने का मोर।
1: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे। और अनिल कुमार जी कहते हैं कि गाना बहुत ही सुपर हिट चल रहा है। और ओके, और यहाँ पे विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद चांदी के डाल पर सोने का मोर वाला गाना प्ले करने के लिए। और यहाँ पे आमना खान लिखते हैं कि वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग है। अच्छा, ये बात है, इसी बात पर तबाही मचाते हैं अगला गाना में। और यानी कि कुंदा बेनी जी लिखते हैं कि आदरणीय सर्वेश भगत जी, अशोक देशमुख जी, आत्माराम जी, सभी की पसंद बहुत ही प्यारी है, धन्यवाद देते हैं। प्रमोद कुमार लिखते हैं कि सर्वेश भगत जी, अशोक देशमुख जी, आप सभी को थैंक यू सो मच। और रणवीर सिंह जेठाला लिखते हैं कि गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं। अरविंद कुमार लिखते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद इस गाने की जिन्होंने डिमांड किया है, धन्यवाद देते हैं उनको। और विजय राज जी जुड़ चुके हैं, तो वेलकम है आपका विजय राज जी। और सभी को प्यार भरा नमस्कार कह रहे हैं। शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि ये तीनों भाई की पसंद बहुत ही बढ़िया है। और निशांत भाई बोले लिखते हैं कि मेरा फेवरेट गाना है। अच्छा, इसके बाद अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ, तबाही मचाने वाला हूँ, विशाल अंगा जी का गाना, इंजॉय कीजिए।

बहुत ही बढ़िया लगा है और निशांत लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है ओके जी। और इसके बाद अगला जो डिमांड है हमारे जाकिर खान जी का है, सुनवाते हैं, एंजॉय कीजिए जाकिर खान जी।

ओके, इसी बात में अगला जो डिमांड में प्ले करूंगा वो सुनीता गोप जी का होगा, लेकिन फिलहाल विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि ये तो सबसे यानी कि टॉप गाना लग रहा है, मस्त गाना लग रहा है, मजा आ रहा है। निशांत भाई बोले थे वाह, लाजवाब गाने के लिए धन्यवाद देते हैं। आमना खान लिखते हैं कि थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग माई रिक्वेस्ट। एंड अनिल कुमार हरिद्वार वाले लिखते हैं कि ये वाला गाना मुझे अच्छा लग रहा है। और शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि ये कसम से वाला गाना बहुत ही प्यारा है। इसी बात पर अगला जो डिमांड है ये सुनीता गोप जी, इंजॉय कीजिए इस गाने को।

वेलकम बैक। और यहाँ पे जाकर जी लिखेंगे थैंक यू सो मच मेरे डिमांड को प्ले करने के लिए, दोस्तों का भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। कुंता जी लिखते हैं कि सभी गाने लाजवाब चल रहे हैं, सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद अच्छे अच्छे गाने की डिमांड करने के लिए। काजल झका जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, और इसी बात पर जो डिमांड है हमारे MD यानी कि जलील जी का, जलील जी सुनना चाहते हैं ओ हम सफर, सुनवाते हैं, इंजॉय कीजिए।

कोई बात नहीं है, माफ किया। फिलहाल अगला गाना प्ले किया हमारे संतोष कुमार यानी सुमन जी के पसंद है, वो चाइना गेट का। हम बस हम एंजॉय कीजिए।

बहुत सारे फीडबैक मेरे पास आए हुए हैं, शामिल नहीं कर पा रहा हूँ, समय कम है इसीलिए सॉरी। लेकिन मैं यानी कॉल लगाऊंगा, हमारे ये मतलब विष्णु जी अगर आप सुन रहे हैं तो मुझे मैसेज कीजिए, नहीं तो मैं दूसरा लॉटरी निकाल लूंगा।

वेलकम बैक, और फीडबैक भी मेरे पास बहुत सारे आए हुए हैं। तो फिलहाल यहाँ पे सुनीता गोप जी लिखते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अमन जी, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया है। और हमारे सरफराज जी, ये बुलंदशहर वाले जी जुड़े हुए हैं, लिखते हैं कि बहुत मजा आ रहा है, सुन के धन्यवाद देते हैं सर जी आपका भी। और शिल्पा बेन जी लिखते हैं थैंक यू सो मच, अमन जी आपने मेरी रिक्वेस्ट को प्ले कर दिया है और मजा आ गया सभी गाने सुन सुन के। और कुंता जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारी डिमांड है सभी दोस्तों को, थैंक यू सो मच। और जागृत जी लिखते हैं कि अमन सर जी आप हिट हिट गाने थोड़ा थोड़ा प्ले करें, क्या करें यार, मजबूरी का नाम अमन बाबू है ना इसीलिए। और फिलहाल राहुल पासी जी लिखते हैं कि अमन सर जी आपने मेरा गाना प्ले किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद देते हैं। और एस प्रसाद जी यानी कि संजय प्रसाद जी जुड़ चुके हैं, तो बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और अरुण मंडल जी लिखते हैं अमन जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद देते हैं मेरे गाने को प्ले करने के लिए। और निशांत रायपुर लिखते हैं नाइस सॉन्ग चल रहा है। गजानंद जी लिखते हैं आदरणीय अमन जी को प्यार भरा नमस्कार, ये गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और प्रमोद कुमार लिखते हैं स्पेशल गजानंद सरकार जी का पसंद बहुत अच्छी लगी है, और हमारे विष्णु चंद्र जी सुन रहे हैं तो कॉल लगाते हैं इनको।

जी विष्णु जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका और बहुत बहुत बधाई हो आपको। कैसे हैं? हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? दोबारा कॉल लगाता हूँ, शायद आपको मेरी आवाज, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी विष्णु जी, आवाज आ रही है मेरी? जो वहां पे दो वॉल्यूम वाले बने होंगे ना, वहां पे एक बार यानी क्लिक करके उस पर क्लिक कीजिएगा तो शायद हो सकता है कि आवाज आ जाए मेरी। हेलो विष्णु चंद्र जी, शायद मेरी आवाज आपको आती होगी, आपकी आवाज मुझे नहीं सुनाई दे रही है। अगर सुन रहे हैं उस पर स्क्रीन पर देखिए, जो स्पीकर जैसा बना होगा स्पीकर पर क्लिक करके दोबारा क्लिक कीजिए, म्यूट अनम्यूट कीजिए, हो जाएगा। हेलो, प्रॉब्लम है शायद आपको नहीं समझ में आ रहा है। हेलो, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही आपकी, यानी कॉल तो कनेक्टेड दिख रहा है, आवाज नहीं आ रही है। शायद कुछ प्रॉब्लम है आपके तरफ से, एक बार ट्राई कर लेता हूँ फिर से, और अगर नहीं होगा तो फिर दोबारा आप उसको अगर आप कीजिएगा तो मैं कोशिश करूँगा। ओके

समझ में आ गया, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम जरूर है। कोई बात नहीं, आज के जो यानी फर्स्ट होंगे मैं उन्हें कॉल लगा लूंगा। फिलहाल अगला जो डिमांड है हमारे नंदलाल यादव जी, जो आज के इन विनर बने हुए थे, उनके पसंद के गाने को मैं प्ले कर रहा हूँ। और बहुत से दोस्तों गाने को मैंने क्या कहते हैं उसको रिजेक्ट कर दिया है। फिलहाल इस गाने को सुनिए।

ओके जी, तो फिलहाल अगर एक बार मैं उनको कॉल लगाऊंगा, यानी कि विष्णु चंद्र जी को अगर कॉल नहीं लगेगा, तो मैं प्रमोद जी को कॉल लगाकर यानी कि प्रोग्राम का आखिरी गाना प्ले करके मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। और राहुल पासी जी, लिखते हैं अमन जी आपने मेरा गाना प्ले किया था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और एस प्रसाद जी लिखते हैं कि सर जी अच्छा ओके देखता हूँ कोशिश, तो अभी मेरे पास समय नहीं है। और यानी प्रमोद कुमार लिखते हैं वाह क्या बात है, आज इस गाने को सुनकर तो मजा आ गया। कुंता जी लिखते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल डिमांड है नंदलाल यादव जी आपकी पसंद का। गजानंद जी लिखते हैं कि नंदलाल जी की पसंद मुझे बहुत पसंद रही है। और निशांत भाई बोले लिखते हैं कि बहुत ही शानदार गाना था। इसी बात पर एक बार फिर से मैं कॉल लगाता हूँ विष्णु चंद्र जी को, अगर कॉल पर बात नहीं होगी तो प्रमोद जी को कॉल लगा दूंगा मैं फाइनली।

0: बिल्कुल इनका कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, सीधा मैं कॉल लगा लेता हूँ इन प्रमोद कुमार जी को। प्रमोद कुमार जी कहाँ है? यहाँ है।
1: तो क्या हुआ?
0: जी बहुत बहुत वेलकम है आपका प्रमोद कुमार जी, उम्मीद करते हैं कि आपकी आवाज आएगी। हेलो हेलो, शायद इनके साथ भी प्रॉब्लम है, नेटवर्क में नहीं है, हो सकता है। हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो, कोई बात नहीं। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? वहां पे वॉल्यूम में अगर, कोई बात नहीं छोड़िए, एक काम करता हूँ आप सबके लिए अपनी पसंद का एक गाना मैं प्ले करके जा रहा हूँ। इस गाने को सुनिए और मुझे दीजिए प्रोग्राम से निकलने की इजाज़त। लेकिन ये काम करता हूँ, थोड़ा सा गुनगुना के जाता हूँ, है ना, ये आखिरी गाना है, और तो एंजॉय कीजिए इस गाने को।

ओके, तो इसी गाने के साथ मुझे डीजे प्रोग्राम से निकलने की इजाजत। मिलते हैं फिर कल शाम 6 बजे, तब तक लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब खैर, बाय बाय। सुनते रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे।

0: घोड़ा चतुरा घोड़ा, ये क्या रहा घोड़ा चतुरा, घोड़ा चतुरा एक पैर है ना, या घोड़ा बोला या चतुरा बोला गा।
1: एक चतुर नार करके सिंगार,
2: एक चतुर नार बड़ी होशियार,
1: मेरे मन के द्वार ये घुसत जात,
2: अपने ही जाल में फंसत जात,
1: हम मरत

0: तो बर्बादी है।
1: क्या कहती हो?
0: हो जाती आजादी है।
1: नहीं नहीं,
0: बाय बाय।
1: सुनो तो, सुनो तो, सुनो तो। आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: आवाज तो आया ही।
1: नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड नाइट।
2: प्यार में अक्सर ऐसा होता है, कोई हंसता है।
1: हेलो, हाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं आप सबकी दोस्त रिया खान।

शो करेगा एकदम सबसे नीचे। जी अच्छा हाँ, उसके बाद वहाँ पे नीचे वाले को फिर ये कर देना, मतलब

0: नाम भी बताइए।
1: पहले जरा आप मुस्कुराइए।
0: मुस्कुराने की न कोई बात है।
1: पूछिए देखिए तो क्या हसीन रात है।

0: मैंने कहा काम तो बताइए।
1: काम?
0: हाँ।
1: काम सीधा साधा है, लेना एक वादा है।
0: अच्छा?
1: प्यार

0: मुस्कुराई पहले जरा आप मुस्कुराई
1: पहले जरा आप मुस्कुराई।

नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं आप सबकी रेडियो दोस्त आरजरिया खान आप सबके बीच हूँ और इस वक्त मैं कोशिश कर रही हूँ कि मतलब कुछ गाने प्ले करूं और आप सब के साथ थोड़ा सा 10-15 मिनट एंजॉय कर लूं। तो चलिए मैं एक प्यारा सा गाना प्ले कर रही हूं, तो आप इस गाने को एंजॉय कीजिए और बताइए कि कैसा लगा। ओके।

हाय नमस्कार सत श्री अकाल गुड इवनिंग। मैं आप सबकी रेडियो दोस्त आरजेडी खान। और बस आप लोग को रात में जगाने आई हूँ, कैसा लग रहा है जरूर से बताइएगा। तो मुझे पता नहीं लग रहा है कि हमारी आवाज कितनी तेज जा रही है और कितनी कम जा रही है, मुझे बताएं।

ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा बताइएगा। मुझे पता नहीं लग रहा है कि हमारी आवाज कितनी तेज जा रही है और कितनी कम जा रही है, मुझे बताएं।

हेलो हेलो हेलो हेलो, तो मेरी आवाज आप सबको कैसी लग रही है जरूर से बताएं, क्योंकि थोड़ी मुझे आवाज कम लग रही है। तो बस आप सभी बताएं कि मेरी आवाज आप लोगों को कितनी मिल रही है और कितनी कम मिल रही है, जरूर बताएं। हेलो, जरूर से बताएं, क्योंकि थोड़ी मुझे आवाज कम लग रही है। तो बस आप सभी बताएं कि मेरी आवाज आप लोगों को कितनी मिल रही है और कितनी कम मिल रही है, जरूर बताएं। तो चलिए, मैं अब सोने की कोशिश करती हूँ और गाना भी प्ले करती हूँ।

हाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं आप सबकी रेडियो दोस्त आरजेरिया खान, और हमारे स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि 12 बज चुके हैं और रात्रि 12 बजने वाला, मतलब बज चुके हैं, एक मिनट बच गया है 12 बजने में। तो बस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरजेरिया के शो में, आप सब का वेलकम करती है रिया। तो चलिए बताइए कि हमारी आवाज़ आपको परफेक्ट मिल रही है या नहीं मिल रही है। ओके,

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

बेटी कहाँ से ले दूँ।

0: ये शिव मंदिर है, कहते हैं वहां जाकर सच्चे दिल से जो भी मुराद मांगो वो पूरी हो जाती है। किसी दिन ले जाऊंगा वहां, भगवान से मांग लूंगा तुम्हें
1: सच।

0: करेगा वो।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 2 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

में घोड़ा। सुना क्या लड़की बोला, बात में बहुत दम है, छाती ठोक ठोक के बोला।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: जाते हो या जबरदस्ती करूं?
1: जाता हूं, जाता हूं, जाता हूं। केवल इतना बता दीजिए कि आप हमसे प्यार तो करती हैं ना?
0: नहीं।
1: थोड़ा भी नहीं?
0: नहीं।
1: झूठा भी नहीं?
0: नहीं, नहीं, नहीं।

श्रीमन नित्य निकुंज विहारिणे नमः। श्री बिहारी बिहारिणी जो जयति, श्री स्वामी हरिदासो विजयते तराम। ब्रजमंडल की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो हमारी श्यामाजू श्री राधा रानी है। जो ब्रजमंडल 84 कोस में फैला हुआ है, जिसमें कि श्री राधा रानी का हृदय स्वरूप हमारा श्रीधाम वृंदावन है, तो आइए मेरे साथ मिलकर युगल छवि का ध्यान करते हुए और श्री राधा नाम का आश्रय लेकर ब्रजमंडल के प्रमुख स्थानों का नाम लेते हुए श्रीधाम वृंदावन से अपनी यात्रा को प्रारंभ करिए। और मेरा विश्वास है कि इस मानसिक ब्रज यात्रा से आपको वास्तविक ब्रज की यात्रा करने का ही फल